अब आ तो गया है मंडे, सहना तो पड़ेगा, कोई तरीका नहीं से बाहर निकलने का, सो माइट एज वेल स्माइल राइट, व्हाट डू यू थिंक? Alright, let me give you some news from the business front. जी हाँ, markets ने totally excited होके welcome किया आगे के पूरे peace deal को in the war between the United States and Iran. दोनों ही देशों ने एक agreement sign किया है, जी हाँ, पिछले weekend पर, जहाँ पर we are obviously now going to see the opening of the Strait of Hormuz. और जो Straits Times index है, STI, that hit a 52-week high June 18th को to close at 5 to 1.2.84, halving rallied strongly from 4988 a week earlier. लेकिन फिर moderation हुई slightly to close at 5192.7 on June 19th after rising over 3% during the week. US और ईरान ने अनाउंस किया जून 14th को दैट अ फ्रेमवर्क फॉर अ पीस डील हैड बीन पुट इन प्लेस इंक्लूडिंग द रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अ मेजर शिपिंग चैनल फॉर ग्लोबल ऑयल एंड गैस फ्लोज. इफेक्टिव क्लोजर ऑफ हॉर्मुज जो पिछले कुछ महीने से बंद था, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हम सभी ने देखा. ऑफकोर्स द ऑयल प्राइसेस वेंट पास्ट US $100 अ बैरल, जिसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन हर किसी ने महसूस करी. 18 जून को US रिलीज द 14-point एग्रीमेंट दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड विद ईरान्स प्रेसिडेंट मसूद, दैट वुड ऑल्सो अलाउ शिप्स टू पास थ्रू द स्ट्रेट टोल फ्री फॉर 60 days, और उसके बाद इमीडिएटली $80, जी हाँ, $80 पर बैरल से भी नीचे गिरा ब्रेंट क्रूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 months. और उसके बाद ऑफकोर्स देखने की बात यह है कि मार्केट्स ने रिएक्ट किया. अब इस पूरी सिचुएशन का कब तक ऐसा ही रहता है, वेल आई रियली होप थिंग्स सेटल डाउन बाय द वे. शांत हो गई, वाला गाना सुनते साथ साथ बिफोर आई प्ले द लव मैशअप फॉर यू, टू बैक टू बैक अमेजिंग ट्रैक्स On the morning show with Renuka. Good morning.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: आपने देखा है कई बार जब हमें कोई फोन आता है कुछ सेल्स के लिए या कुछ ऐसी चीज के लिए, कोई कॉन्टैक्ट करता है हमको, तो कई बार हमें पता होता है कि वो इंसान है इंडियन, डेफिनेटली इंडियन है, उसके एक्सेंट से पता लगता है। बट ही सेज माय नेम इज हैरी, हाउ मे आई हेल्प यू। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती। बात कर रही हूँ कॉल सेंटर्स की। जी, हम जानते हैं कि कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा एकदम से बूम हुई थी और फिलीपींस और इंडिया को उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। दिस वॉज वे बैक इन द 90s, राइट? एंड ऑन द मॉर्निंग शो, अगली खबर हमारी बिजनेस की दुनिया से कुछ ऐसी है कि यूएस ने एक प्रपोजल रखा है कि वो मुश्किल कर सकते हैं एंड लेस अट्रैक्टिव फॉर अमेरिकन फर्म्स टू आउटसोर्स कस्टमर सर्विस वर्क ओवरसीज इंक्लूडिंग टू द फिलीपींस एंड टू इंडिया, जो है दुनिया के सबसे बड़े दो कॉल सेंटर हब्स जहां पर मिलियंस ऑफ जॉब्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एक्सपोर्ट अर्निंग्स आर लिंक्ड टू द यूएस मार्केट। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने हाल ही में बोला है कि वो पब्लिक से कमेंट्स बिल्कुल इनवाइट कर रहे हैं और आज के दिन तक टू अ प्रपोजल व्हिच वाज मेड अर्लियर इन 2026, जिसके बीच में दे आर एनकरेजिंग अमेरिकन बिजनेसेस टू टेक कॉल सेंटर जॉब्स बैक टू द यूएस एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एट एग्जिस्टिंग कॉल सेंटर्स। ये जो मेजर्स डिस्कस हो रहे हैं, दे आर वेज टू एनकरेज द एंड फैसिलिटेट बेसिंग कॉल सेंटर्स इन द यूएस रिक्वायरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स टू डिस्क्लोज द लोकेशन ऑफ द कॉल सेंटर ड्यूरिंग कस्टमर इंटरेक्शंस एंड रिक्वायरिंग कॉल सेंटर वर्कर्स टू बी प्रोफिशिएंट इन अमेरिकन स्टैंडर्ड इंग्लिश एज वेल एज ट्रेन्ड अप्रोप्रिएटली टू रिजॉल्व यूएस कस्टमर्स प्रॉब्लम्स। अब ये जो मूव है, बहुत सारे जो यूएस के बाहर के लोग हैं वो डेफिनेटली अपना कंसर्न रेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इसकी वजह से बहुत कुछ इम्पैक्ट होने वाला है एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होने वाला है। साथ ही में इंडिया में द बीपीएम सेक्टर्स रेवेन्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट वॉज एस्टिमेटेड टू बी $59 बिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग March 2026 एंड यूएस बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया के लिए। लेट्स सी हाउ दिस रियली शेप्स अप बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। या कुछ देशों के लिए कॉल सेंटर्स के बिना गुजारा वाकई मुश्किल। गुड मॉर्निंग।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: हाईएस्ट पेड एक्टर इन इंडिया. जी हाँ, कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि हाईएस्ट पेड एक्टर शाहरुख खान हैं, लेकिन क्या वाकई उन्होंने अपनी गद्दी संभाली हुई है या वो थड़क थड़क गिर गई? सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7. बाय द वे, बात सिर्फ बॉलीवुड की नहीं हो रही है, पूरे पूरे भारत, जी हाँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हो रही है. 90s में, जी हाँ, 90s में चिरंजीवी, कमल हसन एंड श्रीदेवी पहले ऐसे एक्टर्स बने थे इंडियन जो कि चार्ज कर रहे थे 1 करोड़ पर मूवी. और फिर उसके बाद नेक्स्ट डेकेड हमारे जो खान हैं, दे बिकेम द हाईएस्ट पेड एक्टर्स एंड दे इंक्रीज देयर रेम्यूनरेशन टू स्टैगरिंग लेवल्स. जी हाँ बिल्कुल, एंड रीजनल स्टार्स जो हैं उसके बाद येट अगेन डोमिनेट कर रहे हैं सारे के सारे स्टैंडिंग्स, जैसे कि रजनीकांत, यश एंड अल्लू अर्जुन, 200 करोड़ पर फिल्म. यू हर्ड दैट राइट. लेकिन 2026, जी हाँ, वहां पर एक ऐसा बॉलीवुड स्टार आया है जो कि रिक्लेम कर रहा है बॉलीवुड की तरफ से, वही वाला जो कहते हैं ना, मतलब इट्स नॉट इवन अ चेयर, इट्स अ होल थ्रोन, राइट, दैट दिस गाय हैज डिसाइडेड टू टेक ओवर एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट बॉलीवुड एज द हाईएस्ट पेड एक्टर इन इंडिया. और भाई कौन है ये? नो, मैं कुछ नहीं, आपको, यू नॉट गेटिंग एनीथिंग फॉर गेसिंग दिस वन, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली रणवीर सिंह, अनडाउटेडली.
2: हेलो, फ्लोर पे जब है आई येलो.
1: आप जानते हैं कि उनकी पहली फिल्म 3,200 करोड़, जी हाँ, जो कि बॉलीवुड की फिल्म, मैं एक नहीं दो का काउंट बता रही हूँ, दो धुरंधर फिल्में जो हैं 3,200 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड, एंड दैट इंक्लूड्स 1,900 फ्रॉम इंडिया अलोन. अब वहां पर इन्होंने ऑप्ट किया था प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल अपार्ट फ्रॉम अपना यूजुअल फी. उन्होंने कहा हटाओ, ये तो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग पे जाएगी बात, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि इनको कितने पैसे मिले होंगे. इट इज एक्चुअली 325 करोड़ रुपीज दैट दिस गाय हैज अर्न. सो ऑब्वियसली गॉन टोटली, 300 करोड़ से क्रॉस किया. कोई भी आज तक ऐसा एक्टर नहीं रहा जिसने 300 करोड़ भी लिया हो, चाहे आप साउथ देखें, नॉर्थ देखें, कोई भी इंडस्ट्री में देखें. सो इट इज एन अमेजिंग थिंग, एंड दैट ऑब्वियसली ब्रिंग्स दिस गाय टू द एपिटोम ऑफ मनी एनी एक्टर कुड हैव एवर अर्नड. वेल, आई लाइक हिम, सो आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर हिम. सुनते हैं वाला गाना. आई नो अ लॉट ऑफ यू डोंट लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच, बट कम ऑन गाइज, दिल धड़कने दो, चलने दो, रणवीर सिंह की बात है, आने दो, एंजॉय.

0: एंड आफ्टर दोज अमेजिंग ट्रैक्स. जी हाँ, रेणुका आपके लिए यहाँ पर इंतजार कर रही है अगली खबर के साथ में. रेडियो मस्ती 24/7 पर. लॉट ऑफ यू आर स्टिल शेकन अप. 325 करोड़ कमाए हैं इसने धुरंधर से. हाँ, तो आप ही ने तो कमा के दिए हैं उसको.
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज views and a pitch.
0: They all said and done, Ranveer Singh did do a wonderful job in Dhurandhar, right? So he deserved that. Come on, enjoy that. अगली खबर लंदन से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए ऑन द मॉर्निंग शो. जी हाँ, ब्रिटिश बिजनेस मिनिस्टर पीटर कायल ने कल के दिन में ये कहा दैट ही हैज नो रीजन टू बिलीव दैट प्राइम मिनिस्टर कायर स्टामर इज प्लानिंग टू अनाउंस हिज रेजिग्नेशन आज के दिन में. न्यूज से बात करते हुए कायल ने ये कहा बहुत ही फ्रैंक कॉन्वर्सेशन में कि भाई ऐसा नहीं है, स्टामर से मेरी बात हुई है एंड ही लोग कह रहे हैं दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन मंडे 22nd, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. A government source did say that the Prime Minister remained focused on getting on with the job of governing. So, well, reports aaye hain that Starmer was

प्रिपेयरिंग टू रिजाइन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है स्पेक्यूलेशन के अलावा, ये बहुत से लोगों ने कहा है। Well, he has said that जहाँ तक मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, रोज ही रोज उनका काम सिर्फ और सिर्फ वर्क हार्ड करने में लगे रहते हैं वो। ही डज नॉट थिंक अबाउट ऑल दिस। एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट द स्पेस वेयर ही कैन थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पोलिटिकल रियालिटीज एंड चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट आर बिफोर अस। Kyle did not talk more details about the contents of his conversation with the Prime Minister Starmer. बस इतना ही कहा कि एक बार भी कभी भी अपने इंटरेस्ट के बारे में बात प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करी है। It has always been about the country. So that makes him eligible to continue in his position. Well, हाल ही में आपको याद दिलाना चाहूंगी कि स्टार्मर की पोजीशन को डेफिनेटली थ्रेट रहा है कुछ पिछले महीनों से, स्पेशली लास्ट वीक व्हेन लीडिंग पार्टी राइवल एंडी बर्नहम वन अ सीट इन पार्लियामेंट दैट वुड अलाउ हिम टू लॉन्च अ फॉर्मल लीडरशिप चैलेंज। अब देखने की बात यह है कि क्या वाकई वो चैलेंज होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर वहां से हटाए जाते हैं या ऐसे ही चलता है। जवानी है दीवानी के साउंड ट्रैक से इलाही, वन अमेजिंग ट्रैक दैट आई लाइक टू प्ले रेगुलरली ऑन माय शो। एक्चुअली सुनते साथ में मिलती हूँ आपको राइट आफ्टर विद अनदर न्यूज दिस आवर। गुड मॉर्निंग, इट्स रेणुका विद यू।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: We know that drugs in Singapore, no, no, absolute no. Monday Coffee ka best partner. The Morning Show on Radio Masti 24/7. News, views and a pinch. Masti.
1: और इसीलिए ये वाली खबर जब रिलीज हुई तो मुझे लगा मुझे ना ही सिर्फ आपको बतानी जरूरी है लेकिन आई एम स्टिल शॉक्ड बाय व्हाट आई रेड. जून के 12 दिन जी हाँ 3 लोगों को चार्ज किया गया है विद ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड देयर क्राइम्स डिटेक्टेड ओनली आफ्टर दे वर इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट्स. इनमें से 2 जो आदमी हैं दे वर अक्यूज्ड ऑफ हैविंग कंज्यूम्ड आइस व्हेन दे वर इन कंट्रोल ऑफ देयर व्हीकल्स और जो तीसरा है वाज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटोमिडेट व्हिच इज एन एनेस्थेटिक दैट इज यूज्ड इन ई वेपराइजर्स नोन एज के पॉड्स. वेल हाल ही में ये पता लगा है कि कुछ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो सिंगापुर में हो रहे हैं स्पेशली इन द लास्ट 16 मंथ्स दे हैव बीन फाउंड टू इन्वॉल्व द यूज ऑफ ड्रग्स. जी हाँ इसके बीच में एक ऐसा इंसिडेंट जो पुंगोल में हुआ था May 13th को व्हेन अ कार ड्रिवन बाय अ मैन हु हैड अ फीमेल पैसेंजर कोलाइडेड विद अ बस. पुलिस ऑफिसर्स डिस्कवर्ड 42 वेप्स एंड मोर देन 1200 पॉड्स इन द व्हीकल विद सम कंटेनिंग एटोमिडेट. 28 साल की एक औरत की मौत हो गई थी एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट एंड यस द एटोमिडेट वाज फाउंड इन द कार ड्राइवर्स एंड वुमेन्स ब्लड. फरवरी में ये भी पता लगा था कि सारी इन हरकतों के चलते एमपी वैलरी ली जो कि पासरस चांगी जीआरसी की एमपी है उन्होंने रेस किया था इशू इन पार्लियामेंट. शी आस्क्ड इफ द ट्रैफिक पुलिस एज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल असेस्ड मोटरिस्ट इन्वॉल्व्ड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स फॉर वेपिंग और ड्रग यूज. मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स के शानमुगम ने भी ये कहा कि इन द इवेंट ऑफ अ ट्रैफिक एक्सीडेंट टीपी विल असेस मोटरिस्ट फॉर इम्पेयर्ड ड्राइविंग. और अगर टीपी को ट्रैफिक पुलिस को ऐसा लगता है कि देर इज ड्रग या ऐसा कुछ भी यूजेज देन अ ब्लड टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड एंड ड्राइवर्स मे बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ ड्राइविंग व्हाइल अंडर द इन्फ्लुएंस. 38 traffic accidents linked to drug and etomidate use between 23 and 2025 have been reported. Well, is sabke chalte, one, definitely be very careful even when you're on the road. And second, please be reminded, drugs, no way in Singapore. Definitely not. Coming up next, ये वाला गाना and I'll see you across the hour, guys. Good morning, there is more news waiting for you. तो कहीं जाना नहीं, मैं रेनुका आपके साथ.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: And welcome back to the third and the final hour of the morning show. जी, हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत. Renuka has been with you right in the since the morning, actually 7 in the morning. और हम 10 बजे तक आपके साथ में रहेंगे, बिल्कुल यहाँ पर बातें करते हुए about what's happening across the world. It is important for you to know as well as we enjoy sharing, of course. Serious headlines with a not so serious vibe, only on the morning show. US President Donald Trump, जी हाँ, उन्होंने हाल ही में ये कहा that the prospect of global economic collapse was a big reason he signed an interim peace deal with Iran. That admission exposes a key US weakness heading into the next round of talks with Tehran. कल ही के दिन में जो शुरू हुआ है, right? Monday Coffee का best partner. The Morning Show on Radio Musti 24/7. News, views and a pinch. बहुत सारे लोग, जी हाँ हम सब इंक्लूडेड, खुश हो गए थे जब MOU साइन किया गया था ट्रंप और ईरान के बीच में ऑन जून 17th, एंड उसके बाद रीओपन किया गया द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड उसी के साथ में इट्स सेट इन मोशन वेवर्स फॉर सैंक्शंस ऑन ईरान्स ऑयल सेल्स टू द इंटरनेशनल मार्केट. And that was immediately in effect. अब उसके बाद में price जो oil का था, it tumbled further and US stocks ऊपर की तरफ चल पड़े. Facts that Trump pointed to the press conference जो कि France में करी गई थी G7 के चलते. He said, I didn't want to see economic catastrophe. जी हाँ, एक press conference में बोलते हुए France में Trump ने ये कहा कि अगर वो war चलता रहता तो फिर definitely economically it would have been a disaster for the world. ये जो acknowledgement है, it undercuts the US negotiating position as the two sides plan to open talks in Switzerland. And of course, उस time पर तो ये लोग plan कर रहे थे, but कल ये शुरुआत already हो चुकी है. Under the deal, उनके 60 दिन हैं, जी हाँ, to discuss imposing limits on Iran's nuclear program and granting Iran economic relief. Knowing that Trump will be reluctant to restart the military campaign and thus spark fresh economic turmoil, it eases the pressure for Iran to end the talks very quickly. In fact, talks के शुरू होने से पहले ही ईरान ने 20 जून को अनाउंस कर दिया था कि वो बंद कर रहा है हॉर्मुज इन रिस्पॉन्स टू न्यू स्ट्राइफ बिटवीन इसराइल एंड लेबनान. एंड ऑफ कोर्स इस वजह से प्रेशर जो यूएस पर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, एंड अ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट कुड ट्रिगर द डीपेस्ट ग्लोबल स्लो डाउन इन 40 ईयर्स. तो अब देखने की बात यह है कि जो टॉक्स शुरुआत हो चुकी हैं वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं. ऑन रेडियो मस्ती, इट्स ऑल अबाउट द मनी. सुपर 30 के साउंड ट्रैक से सुनेंगे हम पैसा, साथ साथ रेडियो मस्ती 24/7 पर. मैं आती हूँ कुछ देर में, खबरें और हैं, डोंट गो एनीवेयर.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: दिस इज द काइंड ऑफ लव स्टोरी, ईदर यू स्टे आउट ऑफ इट और यू गो इन ऑल द वे, बट इट कांट फेल. Yeah. Yeah. Yeah.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: Wow, keeping the energy up this morning. जी हाँ, on the morning show है रेनुका आपके साथ. अगली खबर जो मैं आपके लिए ला रही हूँ, well, वो जर्मनी और फिलीपींस के बीच की है. I'm not sure if you're aware of this, but let's talk about it right away. सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती. मॉर्निंग शो में इस समय बात करेंगे हम रनवे की एट द क्लार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बनाया गया था टू लॉन्च अमेरिकन एयर पावर अक्रॉस एशिया, लेकिन इस समय उसको रीपर्पज किया जा रहा है टू प्रोजेक्ट जर्मन इंडस्ट्रियल एम्बिशन. Good morning on the morning show, talking about Germany as well as the Philippines' old US base. Well, analysts ka kehna hai that this multi-million dollar deal to develop the former US military base in the Philippines illustrates how economic investment has become the new language of strategic power. और ये जो डील है, विच वॉज स्ट्रक लास्ट वीक ड्यूरिंग जर्मन प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टाइन मायर्स माइलस्टोन विजिट टू मनीला, द फर्स्ट बाय जर्मन हेड ऑफ स्टेट सिंस 1963, सेंटर्स ऑन अ 157,000 स्क्वायर मीटर एविएशन फैसिलिटी एट द फॉर्मर यूएस एयरबेस. ऐसा लग रहा है कि साइट को डेवलप किया जा रहा है इंटू अ स्टेट ऑफ द आर्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल हब केपेबल ऑफ सर्विसिंग 9 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट एट द सेम टाइम. Operations 2028 में शुरुआत होंगी. ये फैसिलिटी टू बी डेवलप्ड बाय लुफ्थांसा टेक्निक फिलीपींस, एन एग्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर बिटवीन जर्मनीज लुफ्थांसा टेक्निक एंड द फिलीपींस मैक्रो एशिया कॉरपोरेशन. इट्स प्रोजेक्टेड टू एम्प्लॉय 1,200 हाईली स्किल्ड फिलीपिनर्स. बहुत ही सीरियस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है ये, और लग रहा है कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स में काफी ज्यादा पावरफुल रहेगी. वेल, देखते हैं हाउ पावरफुल एंड हाउ यूजफुल इट इज टू सिंगापुर एज वेल इन द नियर फ्यूचर, राइट ऑन रेडियो मस्ती. मुझे लगता है दो पावरफुल गाने सुनने के बाद एक थोड़ा सा ऐसा सुकून वाला गाना हो जाए. एक दिल एक जान, पद्मावती के साउंडट्रैक से. आई लव दिस ट्रैक गाइस, आई होप यू डू एज वेल. गुड मॉर्निंग. Just

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Japan. Japan में रोती हुई औरतों को मिलते हैं handsome hug करने वाले boys.
3: Wow. हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
4: ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़.
5: This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
6: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: और इस घंटे की जो बॉलीवुड की खबर है, वेल दैट गेट्स टोटली कंट्रोवर्शियल एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑन द मॉर्निंग शो रेडियो मस्ती विद यू इज रेनुका। जी हाँ, और ये खबर आपके लिए। सीरियस हेडलाइंस With a not so serious vibe, only on the morning show on radio. हाल ही में I'm sure आपने बहुत से लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि जो US प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इटालियन हेड के लिए, जी हाँ, क्या बोला, इटालियन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है मेलोनी, उनके बारे में क्या बोला था, आपने सुना या नहीं सुना ये? So what happened was that he said that she begged me for a photograph. जी हाँ, she begged me. ठीक है, और इस बात पर हमारे जावेद अख्तर साहब, जो usually कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन well, he just decided to take a dig against Trump, right? He says Trump, who is known for lying day in and day out, झूठ बोलने के बिल्कुल popular हैं. He added one more to the never-ending list of lies. Trump ने ये कहा कि मेलोनी ने beg किया है उनको for a photo op. First of all, why would a confident, high-profile, popular, empowered woman who is the prime minister of a great country like Italy that has taught so much culture, art, architecture and good cinema to Mr. Trump's country beg for a photo op with the most unpopular man in the world? Khair, chalo agar discussion ke liye maan bhi jayen ki ye hua, then think what kind of a cheap, indecent, uncouth man will claim it in a press conference. Ye bolne par, मतलब बोलने के बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक फैन, सो कॉल्ड फैन, जिनको ट्रोल करने का कुछ ज्यादा ही शौक था, उन्होंने वहां पर लिखा, सर आपकी कौम के भी झूठ के लिए एक शेर है मेरे पास, जानते हैं हम जन्नत के हूरों की हकीकत, दिल के बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। ओके, एंड ही एक्चुअली टुक अ डिग एट जावेद अख्तर। नाउ जावेद अख्तर बीइंग जावेद अख्तर जी, ठीक है ना, ही इज, ओ माय गॉड, यू कैन नॉट हैव योर वर्ड विद हिम। ही सेड इफ योर स्मॉल पेटी एंड अंडर डेवलप्ड माइंड could grasp a well-known fact that I am an atheist. So tell me, don't tell me about my com. My com are all Indians, including you. और साथ में उन्होंने ये भी लिखा, शायद आप familiar नहीं होंगे इस शब्द के साथ. It means one who doesn't believe in any religion. So, अच्छी लगाई, बिल्कुल बढ़िया लगाई, और मजा आ गया, खुले आम लगाई उस आदमी की. You can't beat जावेद अख्तर साहब with words. भूल जाओ. He is amazing. Good morning, everyone.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text

0: एक ऐसी गेम है जिसमें कि हम चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें. जी हाँ, सो पार्टिसिपेशन के लिए ऑल यू हैव टू डू इज सेंड अस अ मैसेज कॉल्ड लायन LION हमको व्हाट्सएप कीजिए. और व्हाट्सएप करेंगे आपको दो सवाल पहुंचेंगे. दो सवालों का जब आप जवाब देंगे और सही जवाब देंगे, उसके बाद आपको पहुंचेगा एक ईमेल जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा. ऑफकोर्स उसी के साथ साथ में आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि भाई आपके डिटेल्स, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं आप, आपके क्या इंटरेस्ट क्या है एंड ऑल दैट, सो दैट द क्वेश्चंस कैन बी ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट. और साथ ही साथ में आपसे पूछा जाएगा आपका बडी कौन रहेगा, कॉल अ फ्रेंड, रिमेंबर दैट. सो भाई उस तरह की बातें पूछी जाएंगी. एंड राइट आफ्टर दैट ऑफकोर्स आप सबमिट कर सकते हैं द फुल एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अ स्मॉल एप्लीकेशन फी, पार्टिसिपेशन फी जिसे कहते हैं, एंड देन आप हमारे इस अमेजिंग से शो का हिस्सा बन सकते हैं. एब्सोल्युटली लेट मी टेल यू, इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सो अभी हम ढूंढ रहे हैं और भी नाम ढूंढ रहे हैं जो क्वालिफाई हो जाएं. तो प्लीज डू पार्टिसिपेट, इट विल बी फन, आई प्रॉमिस यू दैट. एंड ऑफकोर्स आप जीतेंगे. ओ माई गॉड, यू विल विन कैश, यू विल विन प्राइजेस, आई प्रॉमिस यू दैट. ऑलराइट, ऑन रेडियो मस्ती 24/7 हमारा अगला गाना है ये वाला, But I want you to love me more, not little, little, okay? Radio Masti 24/7, but this is the morning show with Renuka on, of course, the one and only channel that you love, don't you?
1: 3, 2, 1. Ab race sirf speed ki nahi, dimag ki bhi hai.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: And before I take your leave, जी हाँ, विराट कोहली के फैंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है, तो कहीं जाइएगा नहीं, बताती हूँ.
2: Monday Coffee का best partner, the morning show on Radio Musty 24/7. News, views and a pinch.
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर, साथ में कॉफी के मैं भी तो हूँ ना. मॉर्निंग शो है, मैं हूँ, आप हैं, विराट कोहली की खबर है. आई नो आप इंतजार कर रहे हैं और मैं जानबूझ के धीरे धीरे बता रही हूँ. Alright, so Virat Kohli, he's going to return to the Indian team for the One Day International Series England में जो शुरुआत होने वाली है जुलाई से. जी हाँ, obviously subject to a fitness clearance, जो कि आराम से हो जाएगा, ऐसा कहा हमारे देश के क्रिकेट बोर्ड ने. जी हाँ, कल ही के दिन में हमारे जो विराट कोहली है, he was ruled out of this month's ODI series against Afghanistan because of an injury picked up while playing for Royal Challengers Bengaluru in a victory over Gujarat Titans in the IPL. आप जानते हैं finals जब हमने आपने देखे थे मई में, well, जहां पर बेंगलुरु स्कोर्ड अ सेकंड कंसेक्यूटिव आईपीएल टाइटल. इंडिया खेलेगा 3 ओडीआईज इन इंग्लैंड ऑन जुलाई 14, 16 and 19 एट एग बास्टन, सोफिया गार्डन्स एंड लॉर्ड्स रिस्पेक्टिवली. और साथ ही साथ में इतना मैं बताना चाहूंगी कि यशस्वी जायसवाल, जिसने रिप्लेस किया कोहली को अगेंस्ट अफगानिस्तान, वाज नॉट इंक्लूडेड इन द स्क्वाड फॉर द इंग्लैंड टूर डिस्पाइट स्कोरिंग अ सेंचुरी इन द थर्ड ओडीआई अगेंस्ट द अफगान्स इसी वीकेंड पर. Bowler Harshit Rana also returns after a lengthy layoff caused by a knee injury which ruled him out of the 2020 World Cup and the IPL. Rana was a part of the squad in the third ODI against Afghanistan but did not make the final playing 11. अब स्क्वाड में कौन कौन है उनके नाम आप गौर से सुन लीजिए. शुभमन गिल है, साथ ही साथ में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर पटेल, साथ ही में नीतीश कुमार रेड्डी एंड कुलदीप यादव. बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, राणा है, अर्शदीप सिंह है और गुरनूर बरार है. इसी स्माइल को रखिएगा, आप खुश हैं स्क्वाड के साथ में, मैं जानती हूँ मैं काफी खुश हूँ. हम निकलते हैं यहाँ से और आपसे मिलते हैं, बिल्कुल पूरे पूरे दिन मिलते ही रहेंगे एक्चुअली. और आप कहीं में जाएगा क्योंकि मेरे जाने के बाद नूपुर आएगी, नूपुर के बाद में ऑफ कोर्स यहां पर अंतरा जी आपके लिए बैठी होंगी. बड़ा कुछ हो रहा है आज के दिन में, ठीक है, कहीं जाना मत. ये मेरे लिए गा रहे हैं, उड़ जा तू. So I'm going to ood, okay, and you guys are going to stay, all right, on Radio Musty 24/7, guys. Have a fantastic rest of the day and, of course, a wonderful week ahead. Milti rahungi aapko as per the schedule. Check it out on our Radio Musty 24/7 app. Kab kab hai Renuka ke shows? Aur mujhse milna bilkul mat bhulega. Take good care. Bye.
3: You're tuned into Radio Musty 24/7 Live. Keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर, प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
3: 3, 2, 1।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस,
5: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट आउट

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
5: 3, 2, 1।
6: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151896 3.
7: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो, हाय, नमस्कार सिंगापुर, कैसे हैं आप? हाउ इज एवरीबॉडी आउट देयर? ऑल वेल, ऑल गुड? चलो बढ़िया है, कुछ परफेक्ट ना भी होते इट्स ओके यार। देखो मंडे है ना, तो थोड़ा स्लो स्टार्ट इट्स अलाउड, ओके? कॉफी हाथ में हो या ट्रैफिक में फंसे हो, ऑफिस की तरफ जा रहे हो, घर से काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या घर का काम कर रहे हो, एक काम करो, इन सब के बीच में मूड को ना ज्यादा सीरियसली मत लो। मंडे को थोड़ा सा वॉल्यूम अप करना होता है, बस एक अच्छा गाना, एक अच्छी बात, और ये जो दिन है ना अपने आप लाइन पर आ जाता है। यस, वैसे आज 22 जून है, पता है क्या है? आज है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। ओ माय गॉड, बैठो अपने चेयर पे, आंखें बंद करो, इमेजिन करो आप रेन फॉरेस्ट में हो, बरसात हो रही है, ऑसम मौसम है, आपके हाथ में एक कप ऑफ कॉफी है या चाय है, व्हाटएवर सूट्स यू, लेके आप बस बाहर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वाओ, दैट्स सो सूदिंग। अब एक चीज देखो ना, रेन फॉरेस्ट कितना क्वाइटली अपना काम करते हैं, है कि नहीं? वो ग्रो करते रहते हैं, वो आपकी लाइफ को सपोर्ट करते रहते हैं, सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करते रहते हैं, और आज हमें ना बस वही करना है, हमें बस अपने पेस पे चलते रहना है, बिकॉज एज आई सेड, हर चीज को एकदम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। मैं हूँ RJ मुग्धा, लाइव फ्रॉम सिंगापुर, मस्ती हैंगआउट पर आप मुझे सुन रहे हैं, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक एवरीबॉडी। सिंगापुर, हम अक्सर सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं, अक्सर क्या यूजुअली लोग यही करते हैं। MRT बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इट्स वेल कनेक्टेड, टाइम पर पहुंच जाती है, रोड्स कितनी स्मूथ हैं, तो लाइफ भी बहुत स्मूथ है, हॉस्पिटल्स कितने रिलायबल हैं, वाईफाई कितना फास्ट है, ओह माय गॉड, दैट स्पीड इज लाइक वाओ। लेकिन शायद सिंगापुर की सबसे इंपॉर्टेंट बात इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर एक्चुअली वो भी है जो दिखाई नहीं देती है, पीस। लेटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से, पीस इंडेक्स के हिसाब से, सिंगापुर जो है वो दुनिया में 163rd कंट्रीज में से 8th पोजीशन पर है। समझ रहे हो, एशिया में तो हम नंबर 1 है भाई। एंड दिस रैंकिंग ये सिर्फ इसलिए नहीं कि क्राइम कम है तो हम ऐसे, नहीं नहीं नहीं, इसमें सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, मिलिट्राइजेशन, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको देखा जा रहा है। और जब दुनिया में पीसफुलनेस लगातार 12 साल से डिक्लाइन हो रही है, लोग कर रहे हैं, तो आप टॉप 10 में हैं, तो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पीस का मतलब जो है ना, सिर्फ वॉर का ना होना नहीं होता है, पीस का मतलब होता है लेट नाइट आप घर से लौट रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक स्पेसेस में आप कंफर्ट के साथ बैठे हैं, बच्चों का फ्रीली ग्रो करना आप देख सकते हैं, और बिजनेस को बिना किसी कॉन्स्टेंट फेयर के आप बिल्ड होते हुए देख सकते हैं। दिस इज द इनविजिबल कम्फर्ट, रोज मिलता है, इसीलिए कभी कभी ना नोटिस कर ही नहीं पाते हैं, नोटिस ही नहीं होता एक्चुअली।

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
2: 3, 2, 1।
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, hi, welcome back. देखो, सिंगापुर का ग्लोबल पीस इंडेक्स में एशिया में नंबर वन होना इज डेफिनेटली अ वेरी प्राउड मोमेंट। और शायद इसी सिटी का एक और बहुत ही खास पॉइंट देखा जाए तो वो भी इक्वली स्पेशल है। यहाँ पे लोग दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं ऑलवेज। करंट अफेयर्स की हेडलाइन हो, स्पोर्ट्स के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हो, बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप हो, लाइफस्टाइल ट्रेंड्स हो, या फिर रैंडम फैक्ट्स जो बाकी सबको सरप्राइज ऐसे करते हैं। सिंगापुरियंस यूजुअली दे नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम। तो अगर आप वो शख्स हैं जिसको के हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ पता होता है, व्हाई कीप ऑल दैट नॉलेज अपने दिमाग में, सिर्फ ऑफिस लंच कॉन्वर्सेशंस के लिए क्यों बचा के रखे, फैमिली व्हाट्सएप पे क्यों शेयर करना है आपको? मस्ती मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स द लाइन सिटी चैलेंज। सी, ये है सिंगापुर का स्मार्टेस्ट गेम शो जहां पे नॉलेज एक्चुअली विंस। ये एक प्रॉपर स्टूडियो बेस्ड क्विज शो है भाई, एक्सपीरियंस आप करोगे इसको। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, बॉलीवुड, स्पोर्ट, जो भी है सब आपके सामने होगा। हर राउंड में आपकी स्पीड, मेमोरी, प्रेजेंस ऑफ माइंड इन सब का टेस्ट होगा। और हाँ, एक्साइटिंग कैश प्राइजेस एंड काफी सारे मतलब एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिलेंगे बेसिकली। बट देन वहां तक पहुंचने के लिए यू नीड टू डू समथिंग। आपको क्या करना है, फोन उठाना है और 9151-8963 पर LION ये लिख करके भेज देना है। उसके बाद आपको दो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वो दो आंसर्स अगर आपके सही होते हैं तो आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और आप ऐसे ही मूव फॉरवर्ड करते रहेंगे। उन सब के लिए हमारी टीम आपके साथ रहेगी आपको बताने के लिए स्टेप बाय स्टेप। बट उस स्टेप तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी पे कदम रखो, दैट इज LION, लायन LION, उसको भेजो 9151-8963 पर। गॉटा?

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hi everybody, welcome back. So Singapore, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम रोज जाते नहीं है, लेकिन उनका नाम सुनते हैं तो एक मेमोरी जरूर आती है दिमाग में, जैसे कि हार्बर फ्रंट सेंटर। ये एक्चुअली उन्हीं ही जगहों में से एक है। फेरी के लिए अर्ली मॉर्निंग रश आप देख लो, लास्ट मिनट स्नैक्स देख लो, लगेज के साथ चेक इन की लाइन है, वो फेमिलियर ट्रिप्स आपकी शुरू होने वाली है, ऐसी वाली फीलिंग हो जाती है ना। अब ये लैंडमार्क जो है 27 जुलाई को क्लोज होने जा रहा है रीडेवलपमेंट के लिए, yes. लेकिन ट्रैवलर्स आप पैनिक बिल्कुल नहीं करिएगा, फेरी और क्रूज ऑपरेशंस जो है वो नए टर्मिनल में शिफ्ट हो रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग सेंटर से बस 70 मीटर्स की दूरी पे है। रूट स्केड्यूल्स में कोई चेंज होने वाला नहीं है। हार्बर फ्रंट सेंटर की जगह ना फ्यूचर में एक 33 स्टोरी मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट जो है वो आने वाला है, विद ऑफिसेज एंड रिटेल स्पेसेस, एक एलिवेटेड पार्क। कंप्लीशन उम्मीद है 2031 के फर्स्ट हाफ तक एक्सपेक्टेड है।

आई थोड़ा अपग्रेड सिंगापुर का. दिस इज आई थिंक द फेवरेट फॉर्मूला राइट. दिस इज मी मुग्धा, मुझे सुन रहे हैं वासी हैंगआउट पर. स्टे कनेक्टेड डूड.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: ओह माय माय, देसी विदेशी क्या ही कहे। प्रियंका चोपड़ा ने हिंट दिया है कि वो ना एंजेलिना जोली के साथ एक अपकमिंग प्रोजेक्ट पे काम करने वाली है। हाँ जी, देसी ब्लिंग और हॉलीवुड की ओरिजिनल बॉस लेडी एक प्रोजेक्ट में एक साथ। वाओ, दैट साउंड्स ग्रेट। अब प्रोजेक्ट क्या है, फिल्म है, सीरीज है, कुछ और है, ये तो सीक्रेट है एंड इट्स लॉग। लेकिन नाम सुनते ही एक्साइटमेंट का लेवल ऑलरेडी हम सीधा रेड कार्पेट पे पहुंच चुके हैं जब दोनों एक साथ वॉक इन कर रहे होंगे। हाय, और पीसी का आप कैलेंडर देखो, एक तरफ एस एस राजमौली की वाराणसी है, एक तरफ है ऑर्लैंडो ब्लूम के साथ प्रोजेक्ट उनका, अब एंजेलिना के साथ वो कोलैबोरेट कर रही है एंड बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ तो जुड़ ही रही है। मैडम का स्केड्यूल नहीं है, इंटरनेशनल बुफे है उनके पास इस समय। यस, पर उसमें से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बॉलीवुड फैंस के लिए ना ये सिर्फ प्रियंका गोज ग्लोबल ऐसी हेडलाइन नहीं है, एक्चुअली ये वो मोमेंट है जहां पे मुंबई की मसाला एनर्जी और हॉलीवुड की पावर प्रेजेंस एक साथ एक फ्रेम में आ रहे हैं। ये सुन के ही कितना अमेजिंग लग रहा है। You go girl, बस एक रिक्वेस्ट है, जब फर्स्ट लुक आए ना इंटरनेट को थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आग लगनी पक्की है।

0: 3, 2, 1.
1: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, बॉलीवुड में ट्रेलर देखने का असली फन कब होता है? जब आप पूरी फिल्म के बीच में ट्रेलर देख रहे हो, राइट? अभी कॉकटेल 2 देखने के लिए जो लोग गए हैं, आप जाओ, स्क्रीन पे आपको एक ऐसा प्रेजेंस दिखाई देगा, एक ऐसे अवतार में जहाँ पे आप कहोगे आइला, ये तो डबल धमाका है रे। श्रद्धा कपूर ऐसे अवतार में आपको दिखाई देंगी कि पॉपकॉर्न हाथ से गिर जाएगा और मुंह खुला का खुला रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, अब तो क्लियर ही हो चुका है, कॉकटेल 2 के साथ श्रद्धा की अपकमिंग फिल्म है, इट्स ईथा एथा समथिंग, उसका टीजर अटैच हुआ है, हो सकता नहीं हो गया है। और ये यूजुअल प्रिटी गर्ल प्रिटी सॉन्ग ऐसी वाली श्रद्धा नहीं है, नो। इस बार शी इज प्लेइंग द लेजेंडरी मराठी, इंडिया की मराठी तमाशा एंड लावणी परफॉर्मर विठाबाई नारायण गांवकर। मतलब फुल देसी ड्रामा, स्टेज की एनर्जी एंड दैट लावणी का अंदाज। श्रद्धा इस रोल में सीरियसली इमेज फ्लिप वाली चीज दिख रही है, और मसाला यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं लक्ष्मण उटेकर, वही द मैन बिहाइंड छाबा। कास्ट में रणदीप हुडा है। ये फिल्म आ रही है रक्षाबंधन 28 अगस्त को। इसे कॉकटेल 2 खुद शायद रश्मिका और कृति का एक लव ट्रायंगल बज है। अब उसमें अगर आपको ये टीजर देखने को मिल जाए जहाँ पे इतना पावरफुल इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ के जाए श्रद्धा कपूर,

0: गॉसिप होनी तो बनती है। वैसे अगर आपने ये इसकी झलक नहीं देखी है तो जाके पिक्चर भी देख लो, टीजर भी देख लो।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore. Check it out.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: आइला, इतनी सारी एनर्जी के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा। सिंगापुर ड्राई फ्रूट्स में ना एक बहुत ही प्रॉपर वीआईपी कैटेगरी होती है, और उसमें एक नाम आता है मैकेडेमिया नट्स। इसका तो नाम ही कितना मैकेडेमिया नट्स। एक्चुअली ये पता है, ये वो नट है जो खाने में बहुत ही क्रंची लगता है। इट्स वेरी बटरी, नेचुरली रिच, इट्स अमेजिंग। मतलब एक बार अगर आपने एक पैकेट खोला, बस खाते जाओगे। यूजुअली एक खाऊंगा वाला प्लान इज ऑलमोस्ट फेल। मैकेडेमियास को ना, उसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही सॉफ्ट क्रंची क्रीमी होता है, टेस्ट माइल्डली स्वीट होता है, इट्स वेरी प्रीमियम। इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं, इसीलिए चाय के साथ रैंडम किसी बिस्किट की जगह पे आप स्मार्ट मंचिंग करना चाहें तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। पर आपको कहाँ मिलेगा, आप इसको मतलब कहाँ मिलेगा, द सेंस ऑफिस डेस्क पर आप इसको रखो, ट्रैवल बैग में रखो, सैलेड डेजर्ट्स में स्प्रिंकल कर लो, हर जगह पे थोड़ा फैंसी टच देने के लिए दिस मैकेडेमिया नट्स आपको मिल जाएंगे। पर कहाँ मिलेंगे, क्रशेबल मैकेडेमिया नट्स 250 ग्राम सिर्फ $10 में अवेलेबल है एट जी जी मार्ट। जी देखो भैया, फार्म फ्रेश गुडनेस है, क्वालिटी आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, क्योंकि स्नैक छोटा हो सकता है पर स्टैंडर्ड्स छोटे नहीं होते हैं। सो जीजी मार्ट पे जाइए, अपना पैक पिक करिए, आपको जीजी मार्ट तक भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ggmartonline.com सारे नट्स और बहुत सारी स्नैकिंग मंचिंग का आपको यहाँ पे खजाना मिलेगा। सो नेक्स्ट मंचिंग ब्रेक को थोड़ा प्रीमियम बनाइए और जीजी मार्ट पे जाकर के एंजॉय करिए दिस क्रशेबल नट्स। दे आर एब्सोल्युटली फाइन एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस।

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे
2: एक्साइटेड
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: अच्छा सुनो जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा
5: हाँ जी जी
4: आधा केजी मसूर दाल
5: जी जी
4: काजू किशमिश ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं
5: जी जी
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर
4: क्या
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन डॉट कॉम ग्रोसरी एड टू कार्ट करो चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप
4: वाजी क्या बात जी
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आइला, ऑल इज वेल।
1: जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होटों को कर गे गोल। सिंगापुर, थ्री इडियट्स का ऑल इज वेल तो आपको याद ही होगा। यस, वो लाइन जो एग्जाम का टाइम हो, इंटरव्यूज हो, लाइफ में कोई भी छोटा मोटा पैनिक अटैक भी आ जाए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। रेडी हो जाइए, क्योंकि ऑल इज वेल अब हमसे ज्यादा किसी फिल्म के कैरेक्टर्स के लिए अब जरूरी होने वाला है। राजकुमार हिरानी जी ने कंफर्म किया है कि थ्री इडियट्स का सीक्वल सच में बन रहा है, लेकिन ये कोई कॉलेज रियूनियन नहीं है, कोई सिंपल ऐसा कुछ नहीं, नॉस्टैल्जिया पैकेज नहीं मिलने वाला आपको। इस बार रांचो फरहान और राजू की स्टोरी 15-20 साल बाद की होने वाली है। शादी, बच्चे, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फुल ऑन मिड लाइफ क्राइसिस, मतलब ये हमें एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाएगा, है ना। वायरस सर का प्रेशर जो है वो गायब हो जाएगा, अब आएगा ईएमआई का प्रेशर। लाइफ में क्या कर रहे हैं वाला प्रेशर अब लाइफ में आ चुका है। हिरानी और राइटर अभिजात जोशी जो है स्क्रिप्ट पे भी काम कर रहे हैं, और आमिर खान ने अर्ली ड्राफ्ट सुन करके स्टोरी को वंडरफुल वंडरफुल यार, कमाल यार, कमाल है, कमाल है, ऐसे बोल दिया है। यस, बट फिल्म इज स्टिल इन द राइटिंग स्टेज। रिलीज डेट या शूट शेड्यूल अभी कुछ नहीं पता, पर ये पता है कि स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, मतलब काम होगा। एंड द बेस्ट पार्ट, रूमर्ड फोर्थ इडियट वाली बात को हिरानी ने क्लियर कर दिया है। ओरिजिनल ट्रायो ही सेंटर में रहेगा, यानी कि हमको सारे लोग वापस देखने को मिलेंगे। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, तो सवाल ये है कि ग्रोन अप रैंचो भी बोलेगा ऑल इज वेल, कैलेंडर देख के एंग्जाइटी हो रही है, हो रही, पता है, पता है। जैसे कैलेंडर देख के तो आमिर खान को भी एंग्जाइटी हो रही होगी, शादी जो हो रही है उनकी। रियल लाइफ में तीसरी बार। Stay tuned.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7 Live. Hi Singapore, welcome back show के third and the last hour में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, स्किन केयर के नाम पर ना लोग सनस्क्रीन, सीरम्स, फेस मास्क, ऑयल, आइस रोलर्स, पता नहीं क्या क्या यूज कर सकते हैं, राइट? इनफैक्ट करते हैं। लेकिन एक महिला, एक वुमन ने एंटी एजिंग का जो एक शॉर्टकट निकाला ना, उसके लिए तो मतलब पोकर फेस का PhD चाहिए होता है। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज द कैच। उनका कहना है कि वो रिंकल्स अवॉइड करने के लिए 40 साल से प्रॉपरली स्माइल ही नहीं की है। यस, 40 ईयर्स फेशियल मसल्स को ट्रेन किया, एक्सप्रेशंस कंट्रोल किए और स्माइल को भी लिमिटेड एडिशन बना दिया। ओ माय गॉड, भैया मुझसे तो हो ही ना। खैर, सोशल मीडिया पर लोग अभी फिलहाल दो टीम्स में डिवाइड हो गए हैं एज यूजुअल। एक बोल रहे हैं स्किन तो स्मूथ होगी और दूसरे कह रहे हैं पर लाइफ में हंसी का क्या, लाइफ के रिंकल्स अवॉइड कर दिया आपने और लाइफ में रिंकल्स हंसी से ही तो आते हैं, दोज रिंकल्स आर प्रेशियस यार, कम ऑन ऑनेस्टली। मतलब रिंकल्स आ भी जाए तो क्या है यार, प्रूफ है कि आप हंसे, हंसे मतलब आप जिए, आप फ्रेंड्स के साथ पागलपंती कर रहे हैं, आप लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और अगर लिमिटेड एडिशन में हंसे तो क्या ही फायदा हंसने का, लिमिटेड एडिशन की कोई भी चीज ना किसी को अच्छी नहीं लगती है। कमाल के लोग आ गए यार। तो आज का ब्यूटी टिप सिंपल है, सनस्क्रीन लगाइए, पानी पीजिए और जोक फनी हो तो स्माइल रोकने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकल से ज्यादा डेंजरस बोरिंग लाइफ होती है भाई, तो हंसो, मुस्कुराओ और सुनो मस्ती हैंगआउट।
1: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का।
0: यस, मैं तो बिना हंसे बात ही ना कर पाऊं। और क्या, तो
2: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस, एनी टाइम एनीवेयर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20।
3: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वही तो, एक जायंट टॉर्टोइस, इसका नाम है लोनाथिन। कमाल की बात है सिंगापुर, ये न्यूज सुन के ना ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री बुक ने वॉकिंग एंट्री मारी है लाइफ में मेरी, और मैं कितनी पुरानी हूँ। नहीं मैंने, एनीवेज आई एम कंफ्यूज्ड, ये जो टॉर्टोइज है ना, ये बाबा आदम के जमाने का है। आई एम श्योर ये वही वाला कछुआ होगा जिसने खरगोश के साथ रेस लगाई थी और जो जीत गया था और खरगोश हार गया था। व्हाई? बिकॉज ये कछुआ जो है 1832 से जिंदा है, और पौराणिक कथाओं को देखा जाए तो किसी को नहीं पता कि कछुए और खरगोश की रेस कब हुई थी। तो मतलब ये कछुआ सीधा वहीं से आया है माइग्रेट होकर के, तभी ये इतना पुराना है ना। मतलब जब ये दुनिया में आया था, सिंगापुर अभी मॉडर्न सिंगापुर बना भी नहीं था। जोनाथन इज बिलीव टू बी अराउंड लाइक 193 इयर्स ओल्ड, ऑफिशियली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल को माना जाता है। ये रहता है सेंट हेलेना आइलैंड पर। ओह माय गॉड, जो नाम ही इतना उम्फ है, तो ये तो रहेगा ही ना 193 इयर्स तक। और ये अभी अपनी काम टॉर्टोइज लाइफ जी रहा है। यस, स्लो वॉक, सनशाइन, फूड, जीरो रश, जीरो डेडलाइंस काई बात की। ऑनेस्टली जोनाथन जो है, ही इज क्रैक्ड कि लाइफ बेटर कैसे बना सकते हैं। धूप से को अंदर चले जाओ अपने खोल में, फिर बाहर आ जाओ, खाना खाओ, फिर अंदर चले जाओ अपने खोल में, बाहर आओ मजे करो, फिर अंदर चले जाओ अपने खोल में। वाओ, भगवान मुझे ऐसा खोल देते तो कितना अच्छा रहता, खोली का भाड़ा भी नहीं देना पड़ता। वाह, सोचो इसने स्टीम ट्रेन्स के एरा को देखा है, टेलीफोन्स देखे हैं अगर देखे हो तो, वर्ल्ड वॉर्स देखे हैं, इंटरनेट देखा है, और अब प्रोबेबली ह्यूमंस को रील स्क्रॉल करते हुए भी देख रहा होगा जिसमें इसकी खुद की भी रील आई हमारे सामने। माय गॉड, यू आर अमेजिंग टॉर्टोइस, यू आर अमेजिंग। हम लोग 30 के होते ही बोलते हैं यार बैक पेन हो रहा है, जोनाथन के सीक्रेट, मे बी स्लो डाउन, स्ट्रेस कम, सनशाइन ज्यादा, लाइफ को रेस में भागने का नहीं डर,

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आपकी नॉलेज, आपकी जीत।
2: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

अनाउंसमेंट सुन के खुद आप उसको बोलने लग जाते हैं या वॉइस नोट्स में फुल एक्सप्रेशन के साथ बात करते हैं. तो द आरज एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज योर नेक्स्ट स्टॉप. I mean, we could be your next move. यहाँ पे सिर्फ हेलो लिसनर्स ये बोलना सिखाया नहीं जाता है. बिगिनर से एडवांस तक का 12 आर का ट्रेनिंग स्केड्यूल है हमारा ऑनलाइन इन स्टूडियो दोनों फॉर्मेट्स में. फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल फोकस लर्निंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात 14 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए ये कोर्स अवेलेबल है. सेलेक्टेड ट्रेनीज को ना रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टूडियो में बैठ के शोज करने का मौका मिलेगा. आई एम टेलिंग यू इससे अमेजिंग फीलिंग अगर आप एक रेडियो लवर है तो आपको कभी नहीं आएगी एक लाइव शो होस्ट करने की विद ऑल दोस ढिंचैक इक्विपमेंट्स इन द स्टूडियो. माय गॉड दे आर अमेजिंग. अपना ब्रीफ मेल करिए छोटा सा इंट्रो. मेल आईडी है info@radiomasti.com.sg. माइक आपका हो सकता है. अपने आप को मौका देकर देखिए. आगे हम संभाल लेंगे. हाँ.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

कितनी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और बस आज के मस्ती हैंगआउट की ये जो चैप्टर वाली कहानी है यहीं पे क्लोज करते हैं। आज हमने बॉलीवुड के फ्रेश बज से लेके स्टोरीज तक की जो हमने सारी बातें करी हैं, ओ माय गॉश क्या ही खबरें पड़ी हैं। 193 साल के टॉर्टोइज जोनाथन की हमने बात करी, लाइफ को कैसे हमको स्लो लेना है। और हाँ, अगर आपके अंदर माइक पकड़ने का कीड़ा है तो हमने उसका भी आपको सोल्यूशन बताया। बिना हंसे लाइफ को कैसे जीना है ये हमने सीखा, पर मैं नहीं जीना चाहती ऐसी जिंदगी, सॉरी। अब वो कर रही है तो कर रही है, आप जहां भी हैं, जिधर भी हैं, ड्राइव कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, बस अपना क्वाइट टाइम एंजॉय कर रहे हैं मुझे सुनते हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लेटिंग मी बी अ पार्ट ऑफ योर डे, ऑफ योर लिटिल लाइफ, ऑफ योर लाइफ एक्चुअली लिटिल पार्ट ऑफ योर बिग लाइफ। मैं हूं आरजे मुग्धा, माइक बंद हो रहा है मेरा वाला, लेकिन मस्ती का सिग्नल ऑन रखेगा। फिर मिलेंगे अगले शो में नए मूड, नए गाने और नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए खुद को लाइटली लीजिए, आज मंडे है, जिंदगी को दिल से जी लीजिए, मजे आ जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
3: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
5: चेक इट आउट।
6: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
5: चेक।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: नाचने का मन है
2: मेरा भी. आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. चेक इट आउट.
0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है.
4: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है.
5: मुझे चांद पे ले चलो.
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है. बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे. ट्यून इन टू
5: रात अकेली है. जोश में रहो.
6: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे. पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
3: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
4: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
2: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे। Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7. Aapki knowledge, aapki jeet.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: Welcome to your chill zone. Musti Music Cafe. Only music, only musti.
1: ये एडिट भी ना आज रात ही खत्म कर देना।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।

0: डीजे तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो।
1: मेरे महबूब, मेरे सनम, शुक्रिया, मेहरबानी करब कि आप आ गए भाई। शाम हो गई है और कितनी हसीन शाम है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते, गुड इवनिंग। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर बिल्कुल जुड़ चुकी है। 5 बजकर हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे 4 मिनट, विच मीन्स दैट वो समय आ चुका है कि जहां पर हम बिल्कुल बिंदास शुरू कर सकते हैं मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। वैसे मैंने सोच रहे थे कि यार इस शो का पर्टिकुलरली नाम है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, बट ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी और शो में जैसे ट्यून इन किया हुआ है मेरे और आपने बोला हो और हमने प्ले नहीं किया हो? तो इट्स लाइक हमारी सेटिंग ही कुछ ऐसी हो रखी है ना कितने टाइम से। एंड दिस इज फॉर ऑल दोज पीपल जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उनको नया नया सुनना शुरू किया है एंड दे आर लाइक कि ओ अच्छा ऐसा भी। बट आज तो सिर्फ और सिर्फ लिसनर्स की चलती है भाई साहब, मैं तो यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो दिन है जहां पर आपकी चॉइस, आपका मूड और आपका इको, कोई सवाल जवाब ज्यादा नहीं होते हैं, अनलेस मतलब कुछ बहुत ही अलग चल रहा हो यहाँ पर। बट आप यहाँ पर अपने दिल का कोई भी गाना, कोई भी फेवरेट गाना जो है वो बिल्कुल प्ले कर सकते हैं, और जब तक आप नहीं कुछ ऐसा बताते तब तक मेरे चहेते या फिर मेरे पसंद के कुछ गाने जो है वो आप सुन लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये जो चल रहा है वो अच्छा ही है, यू नो, मूड मूड की बात है, टाइम टाइम की बात है। तो फिर अभी बताओ कि मूड कैसा है आपका, उससे भी पहले वीकेंड कैसा गया आपका, हाउ वॉज इट? आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड, आई एम श्योर those who were celebrating Father's Day yesterday, they all also enjoyed, and hope you have enjoyed the short snippets and videos which we also shared of a few fathers हमारे जो है सोशल मीडिया पेजेस पर। एंड क्या मस्त मस्त इंसिडेंट जो है ना, बैठो तो कितनी सारी यादें जो है ताजा हो जाती हैं बातें करते करते, नहीं बट अचानक से अगर कोई पूछ ले तो कोई एक याद उठा के बोलना कितना मुश्किल हो जाता है। बस यही तो जिंदगी है। और जिंदगी को थोड़ा सा म्यूजिकल बनाने के लिए हम है ना हमेशा आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। चलिए फिलहाल थोड़ा जग वग घूम के आइए, थोड़ा चोर बाजारी करके आइए और फिर हम वापस आते हैं अपने खबरों के सिलसिलों को बिल्कुल शुरू करते हैं। और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सुन रहे हैं आप, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, गुड इवनिंग।

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
3: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
5: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
6: थोड़ी देर पहले तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी चीजें कहां से शुरू करें बातें। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है आप सुन रहे हैं। 5:00 हो चुके हैं 16 मिनट और फिलहाल चॉइस है मेरी ये कॉमेडी इश्यूज, जिनको लेकर आजकल बहुत सारा कुछ हो रहा है। कोई भी कॉमेडियन आजकल, आपने कितने स्टैंड अप कॉमिक्स के कितने वीडियोज और ये सारी चीजें आना बंद से हो गए हैं, बहुत कम आप देख रहे होंगे। बिकॉज यू नो बहुत सारा कुछ है, कभी उधर से बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी लोगों की तरफ से चीजें वो हो जाती है। केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं लोगों के ऊपर बात बात पे कि एवरीबडी इज काइंड ऑफ कि भाई और कितना क्लीन करे और कितना कितना ज्यादा बोले। बट एनीवेज, कमिंग टू भाई समय रायना, एंड समय रायना इज बैक नाउ। द समय रायना इज द सेम वन जो जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई थी, ये रणबीर अलाहाबादिया एंड अ लॉट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसर्स, दे इंडियाज गॉट लेटेंट करके, एंड इट इज Quite a popular show, let me tell you that, okay? I know a lot of people जो कि काफी शिद्दत से next episode का wait किया करते थे at that point of time, and I'm talking about season 1. So ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद हमारे समय रहना बाहर आए, then he did his single एक स्टैंड अप किया, एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इंडियाज गॉट लेटेंट 2 तो आएगा ही आएगा, एंड देन लीक हुआ एक छोटा सा पिक्चर जहां पर शर्वरी एंड आलिया भट्ट ऑन द सेट्स नजर आए, एंड दैट गॉट एवरीबडी क्यूरियस कि व्हाट, ओ माय गॉड। एंड फाइनली द एपिसोड इज अपेरेंटली आउट, व्हिच आई डेफिनेटली आई प्लान टू वॉच इट very very soon. I want to see the content, and I also want to tell you also later ki whether you should actually go and watch something like that or not. So well, uska ab zarur intezar kare, but controversy is already shuru ho chuki hai. Ab aisa kuch ho aur controversy na ho to phir aap poocho ki dafa kaun si lagi hui hai iske upar. So there were two characters who are going very viral in this India's Got Latent 2. Ab ye dono mein se ek banda Donald Trump ka jo hai, unhone बिल्कुल, there was a section and he is very good actor. I have just seen some snippets of him and he's so on point. But now Samay is facing backlash over the whole joke he has created around it on India's Got Latent. So yeah, these two girls were the first celebrity guest on this premiere of this brand new season. But then yeah, and specially इस वक्त जो हालात चल रहे हैं US ईरान के, उस बीच में ये सारा कुछ होना और फाइलों की वो वाली फाइल्स जिनकी बात तो शायद मिस्टर ट्रम्प खुद ही नहीं करना चाहते, बट यहाँ पर कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो बेसिकली द जोक काइंड ऑफ स्पार्क क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ व्यूअर्स, लेट मी टेल यू की ऑनलाइन जो है, विद वन कॉमेंटिंग दैट व्हाई द हेल वुड वन ऑफ द गाइस स्टैंड अप एंड अप्लॉड ऑन समथिंग लाइक दिस, दे आर नॉट अवेयर इनफ। किसी ने लिखा कि इट वॉज टेरेबल एंड नॉट नीडेड एट ऑल। सवाल यह आता है कि कौन ये सेट करेगा और कौन बताएगा कि क्या कर सकते हैं ये लोग और क्या नहीं कर सकते। आई डोंट नो, यू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट इट, बट लेट मी प्ले द नेक्स्ट सेट ऑफ सॉन्ग्स। गुड इवनिंग सपना आंटी, आइए आइए।

0: राजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। वक्त तो चला है कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है क्या है सिंगापुर की सड़कों का हाल चाल। 5:29 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन SLE टुवर्ड्स CTE आफ्टर वुडलैंड्स एवेन्यू 2। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन KJE टुवर्ड्स BKE आफ्टर वुडलैंड्स रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 3। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन PIE टुवर्ड्स टुवर्स एट टोगवा रोड एग्जिट। सो वेल, ये है आपका इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग व्हिच इज द टाइटल ट्रैक ऑफ ओके जानू, ओके जानू, ओके जानू, ठीक है।

0: अपना फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: Are you ready?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती बॉयस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा यहाँ पे बिल्कुल आपके साथ बनी हुई है। और अगर आपने हमारा अभी तक लाइन सिटी चैलेंज में साथ नहीं दिया हुआ है, या फिर आपने अपने जवाब नहीं भेजे हैं, या फिर आपने सिर्फ लाइन लिख के नहीं भेजा है, या फिर आपको बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है कि अंतरा ये आते ही तुमने क्या ही बात करनी शुरू कर दी, कुछ और भी तो बताओ उस पे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव का ये जो एक खास गेम शो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम सभी ही बात कर रहे हैं बिकॉज वी ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम शो। उसका आमंत्रण आपको बिल्कुल देना बनता है, उसके बारे में आपको बिल्कुल बताना बनता है। भाई कई बार होता है, कितनी बार हुआ है कि हमने यहाँ पे आपसे सवाल पूछा और आपके झटपट से एकदम से जवाब आ गए और आपको लगा कि ये तो मतलब हमारे बाएं हाथ का खेल था। तो फिर अगर आपको लगता है दैट योर नॉलेज इज ऑफ दैट लेवल कि आपको ये सारे सवाल जो है काफी आसान से लगते हैं, ये सवाल आपके एंटरटेनमेंट से हो सकते हैं, ये सवाल आपके करंट अफेयर से हो सकते हैं, सवाल आपके जो है जनरल नॉलेज से हो सकते हैं, and if you are good at it or you think you know ki koi to hai main kisi ko janta hu ki jo kafi hai, then this game show is just for you because it will bring you to a level jahan pe puri duniya jaan jayegi ki bhai jab where there is brain you should always appreciate and talk about it. So well, it's one of a kind a game show hamara the Lion City challenge, jisme sabse pehla phase to aapka yahi hai ki aapne hame likh ke bhej dena hai lion lion 9158963 par. Once you do that, hamari taraf se aapko jayega first phase ka ek qualifying, matlab do sawal puche jayenge aur wo aapko likh ke hame wapas bhejne hain, and then you अगर सही जवाब आपने हमें भेजे तो देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप्स एंड नेक्स्ट राउंड, एंड उसके बाद तो फिर जो है काफी पूरा जो है मामला काफी काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। देर आर गोइंग टू बी एपिसोड, देर आर गोइंग टू बी राउंड, देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्राइजेस जो इसमें इन्वॉल्व है। अब प्राइज के बिना तो मतलब ऑफकोर्स देर इज एंड डेफिनेटली इट विल excite you to another level altogether. So yes, बिना किसी देरी के LION लाइन लिख कर हमें भेज दे टू पार्टिसिपेट हमारे लाइन सिटी चैलेंज में। और बाकी अगर कोई गाना वाला रिक्वेस्ट करना हो वो भी आप भेज सकते हो इसी सेम नंबर पे। और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आप सुन रहे हैं, मस्ती बॉयस आपकी चॉइस।

मुझे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर और बिल्कुल चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस आप यहाँ पर अपने पसंदीदा जो है जो भी दिल में आ रहा हो जो गाना मे भी आप सुबह से गुनगुना रहे हो या फिर अचानक से सुना यार ये गाना तो बड़े दिनों हो गया सुने हुए ये वाले गाने सारे गाने बिल्कुल बिंदास मुझे यहाँ पे बता सकते हैं लेकिन फिलहाल मेरा दिमाग में जो गाना चल रहा है वो है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं थ्री इडियट्स दिल जो तेरा बात बात पे घबराए भाई क्या आइकॉनिक मूवी रही है थ्री इडियट्स इफ देयर वाज अ लिस्ट एंड देयर इज ऑलवेज अ लिस्ट व्हिच इज ऑफ द मूवीज यू कैन गो एंड रीवॉच देम अगेन एंड अगेन देन थ्री इडियट्स डेफिनेटली उस मूवीज की लिस्ट में शामिल होगा ही होगा जस्ट इमेजिन अभी तो टाइम्स जो है they have changed so much right pehle tv pe कई सारी मूवीज कई बार आया करती थी एंड वी हैड दिस हैबिट बिकॉज ऑप्शंस ज्यादा नहीं थे अभी ऑप्शंस इतने ज्यादा है लेकिन फिर भी इफ यू हैव दैट वन मूवी विच यू कैन गो बैक टू एंड वॉच देन डेफिनेटली दैट मूवी हैज लेफ्ट स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन यू सो एनीवेज जब थ्री इडियट्स के बारे में पता चला कि भाई ऐसी उठती उठती खबर आई थी राजकुमार हिरानी साहब जो है थ्री इडियट्स का नेक्स्ट जो है पार्ट के तरफ कदम बढ़ा चुके हैं बनाने के लिए एंड मे बी देर इज अ फोर्थ इडियट ऑल्सो ऐसा कहा जा रहा था इन्वॉल्व इन जो कि शायद विकी कौशल का नाम जो है सब में ऐसे हल्के हल्के सुनाई दे रहा था But आमिर खान जो है उन्होंने कहा है देर इज नो फोर्थ इडियट इट इज जस्ट दिस The same three idiots, but ये 20 years later वाली कहानी ये है तो बहुत जो early draft है ये जो sequel का three idiots का तो well हमारे जो आमिर खान है वो already read कर चुके हैं and then जो है कार्यक्रम इसके तरफ already धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा मैं वही सोच रही थी कि ठीक है एंगल तो अच्छा सोचा है फोर्थ इडियट का बट देन क्या रैंचो और उनके गैंग को जरूरत है फोर्थ इडियट की बट यू नेवर नो व्हाट वर्क्स विद द ऑडियंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टाइम्स आर रियली रियली डिफरेंट पीपल आर व्हेन वी हैव सो मेनी ऑप्शंस आई डोंट नो what will actually work whether राजकुमार हिरानी साहब का ये जो थ्री इडियट्स का फॉर्मूला है 20 years later is it going to work again I don't know Let's see. We just have to wait and watch, right? Radio Masti 24/7 live par filhal ke liye. Badhte hain aage and let me take you through two beautiful numbers. And yes, I will be right back. Stay tuned.

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

What do you do when your team wins football world cup में एक मैच में आपकी टीम जीत जाती है? So what do you celebrate, you shout, you scream, क्या करोगे आप? सोचो, तब तक ये घंटा wrap up करके मिलती हूँ अगले घंटे में on Radio Vasti 24/7 live.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो 6 बजे के उस पार आप सभी का स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. मैं अंतरा आपके साथ. 6 बजकर हो चुके हैं 5 मिनट और थोड़ी देर पहले सवाल कुछ ऐसा था दैट जब आप किसी चीज के फैन होते हो तो आपका एक्सप्रेशन क्या होता है. जैसे कोई आप कॉन्सर्ट में गए हो तो देन यू काइंड ऑफ सिंग अलोंग, यू नो स्वे विद द गानास एंड यू आर टोटली इनटू इट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप एंड वी आर I am seeing, you know, these football fans like, they love you. You must have seen ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे you know लोग बाहर जाके सड़कों पे नाच रहे. क्रिकेट में भी ऐसा होता है, right? जब इंडिया जीत जाती है तो सड़कों पे जाके सब लोग नाच रहे होते हैं, fireworks चल रहे होते हैं. It's about like पूरा का पूरा आपका कंट्री जो है उसका एक इट्स अ ब्यूटिफुल साइट, राइट. सो हुआ कुछ ऐसा दैट भाई जापान की मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ. तो जापान और ट्यूनिशिया के बीच में मैच हुआ वर्ल्ड कप वाला एंड ये June 20th की मैच की मैं बात कर रही हूँ. जापान की टीम जीती 4-0 से. okay, those who know, they know, right? But I'm not talking about only about the match which they played and how amazingly well they played and they won also. But जब जापान की टीम जीती तो फैंस इतने खुश हुए. They took over the Shibuya क्रॉसिंग. अब जो जापान गए हैं या फिर जिनको नहीं पता, इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस क्रॉसिंग, ठीक है, जापान में शिबुया क्रॉसिंग इसको कहते हैं. एंड इसके कई एरियल व्यूज के जो है आपको इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा. इट्स अ ह्यूज वन. ओके, सो भाई लोग वहां के इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, इतने ज्यादा कि मैं क्या ही बताऊं. सो फैंस वर ऑल ऑन द स्ट्रीट, ठीक है. अब सोचिए चौराहा, ठीक है, एंड अचानक से सारे फैंस को सब चौराहे के इधर उधर खड़े हुए हैं. बट दे वॉन्ट टू गेट टुगेदर, दे वॉन्ट टू डांस एंड सेलिब्रेट टुगेदर द विन. रेड लाइट होती है, 1 से 1.5 मिनट का टाइम है. वो 1 से 1.5 मिनट के टाइम में ये सारे चारों तरफ से इतने सारे फैंस सब आते हैं, बीच रास्ते में साथ में मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं. 1.5 मिनट एग्जैक्टली जैसे ही वो ग्रीन लाइट होने वाला होता है, सारे के सारे फैंस इमीडिएटली बैक ऑफ हो जाते हैं. पूरा रास्ता खाली एम्प्टी एंड भाई खोल दिया जाता है नॉर्मल ट्रैफिक को आगे बढ़ने के लिए. Only during those 1.5 minutes, they just got together and celebrated. भाई अलग level of discipline चाहिए होता है ऐसी सारी चीजों के लिए. Like मैं जितना जापान के बारे में सुनती हूँ और जैसे वो जब जाते हैं तो जहां पे वो बैठे हुए होते हैं ये लोग सारे सब कुछ क्लीन करके जाते हैं ना, इट इज नाइस. इट कितना अच्छा फील गुड वाली चीज आती है ये सारी चीजें सुन के. नहीं, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज सो वायरल राइट नाउ. आई वाज लाइक आई हैव टू टॉक अबाउट इट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, इसीलिए तो हम कहते हैं कि सजन रेडियो जरा चला के रखा करो. ऐसी बातें और कहां आपको यू सुनने को मिलेगी. और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव डेफिनेटली एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कीप यू अपडेटेड ऑन द गो एनी टाइम एनी वेयर.

0: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: 12 बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: 6:00 हो चुके हैं, 20 मिनट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ। मस्ती बॉयज आपकी चॉइस यहाँ पर चल रहा है, बट उसी के साथ साथ ये क्या कुछ नहीं चल रहा है दुनिया में। सो वेल, इट वाज आई थिंक लास्ट वीक या फिर लास्ट टू लास्ट वीक व्हेन आई वाज गिविंग यू द अपडेट अबाउट दैट हाउ यूके में जो है उनके प्राइम मिनिस्टर साहब का स्ट्रामर, उन्होंने कहा कि भाई वहां पे 16 साल से कम के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया का बैन का प्रपोजल बिल्कुल आगे किया गया। और आज अभी का ये अपडेट है, बात हो रही है यूके के प्राइम मिनिस्टर साहब कायर स्टार्मर की, जिन्होंने अपने रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। That is right. It's just happened a while ago. सिर्फ 2 साल पहले उन्होंने एक हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री के साथ लेबर पार्टी को उसके साथ वो वापस आए थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी को लगता है कि अगले इलेक्शन तक ले जाने के लिए किसी नए लीडर की जरूरत है। सो सितंबर तक ब्रिटेन को नया प्राइम मिनिस्टर वापस से मिल सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दैट कि ब्रेक्सिट रेफरेंडम के बाद से यूके लगातार पॉलिटिकल चेंजेस देख रहा है। डेविड कैमरॉन, थेरेसा मे, देन बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनाक, देन केयर स्टार्मर, एंड अब एक नया नाम इस लिस्ट में जुड़ने वाला है। मतलब आई थिंक पिछले 10 सालों में ब्रिटेन अपने 7वें प्राइम मिनिस्टर की तरफ फिलहाल बढ़ रहा है। स्टार्मर जो है उन्होंने अपने स्पीच में एक लाइन कही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख रही थी। उन्होंने कहा दैट उन्होंने अपनी पार्टी की बात सुनी और उस फैसले को गुड ग्रेस के साथ एक्सेप्ट किया। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल से अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स उधर ऐसी बातें ना रोज सुनने को नहीं मिलती, तो दैट एक्चुअली स्टेड विद मी। अब नेक्स्ट हु इज गोइंग टू बी द लीडर, उस पर सबकी नजरें हैं। कई रिपोर्ट्स में एंडी बर्नहम का नाम जो है काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के नाम से आगे आ रहा है, लेकिन इस पूरी कहानी से ये तो इतना समझ में आ रहा है दैट लीडरशिप सिर्फ जीतने का नाम नहीं होता है। कभी कभी लीडरशिप का मतलब ये भी होता है कि जब वक्त आए तो जिम्मेदारी के साथ बैटन को जो है वो आगे भी बढ़ाया जाए। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर कीपिंग यू अपडेटेड ऑन द गो इज अस ऑफ कोर्स, बट अपडेटेड रहने के साथ साथ गाना क्या सुनेंगे वो आप मुझे बता सकते हैं 9151896 3 पर, क्योंकि ये है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। बाकी अगर मेरे पसंद के गाने आपको पसंद आ रहे हैं फिर तो बल्ले ही बल्ले है ना। गुड इवनिंग।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: That's right, वो वक्त हो चला है जहां पे सीधा यहां से जाएंगे सड़कों पर और पता करेंगे क्या है ट्रैफिक का हाल अंचाल। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन PIE towards it was after Jurong West Avenue 2। हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन PIE towards Changi बिटवीन BKE एंड बुकेट बतौक ईस्ट एवेन्यू 3 और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन TPE towards SLE after Tampines Avenue 7। भाई ये तो हो गया ट्रैफिक का अपडेट। भाई लाइफ का अपडेट कुछ ऐसा है कि बड़ी नई नई ताजा एक दोस्त बनी है और उसको मैंने बोला कि पक्का पक्का मतलब ट्यून इन करना और मैं जरूर तुमको जो है बताऊंगी व्हेनेवर आई एम ऑन माय शो। एंड यस दैट ब्यूटीफुल गर्ल हैज ट्यून इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड मैंने सोचा कि उसका स्वागत कर दिया जाए यहाँ पर। विच ऑल्सो रिमाइंड्स मी देयर आर लॉट ऑफ फन थिंग्स विच हैड हैपेंड ओवर द वीकेंड। एंड मैं एक किस्सा बिल्कुल आपको सुनाना चाहती हूँ आउट ऑफ इट बिकॉज यू नो यू डोंट मीट दीज काइंड ऑफ पीपल जो है अक्सर अपनी जिंदगी में एंड आई कैटेगराइज देम एज लाइक वेरी वेरी यूनिक पर्सनालिटीज बिकॉज आई गो लाइक ओ माय गॉड आप ऐसा करते हो व्हाट इज दैट एंड व्हाट काइंड ऑफ यूनिक पर्सनालिटी ट्रेट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। लेट मी कम बैक एंड टेल यू मोर अबाउट इट बट राइट हियर राइट नाउ आई थिंक वेलकम अंकिता दैट यू हैव ट्यून्ड इन टू द वर्ल्ड ऑफ गुड म्यूजिक एंड रेडियो एंड मैं तुम्हारा गाना जरूर यहाँ पे प्ले करूंगी कुछ ही देर में। फिलहाल के लिए ये गाना मेरी तरफ से सुन लो। ऑलराइट गुड इवनिंग।

0: आपके हिट्स, आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती बॉयस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर यहाँ पर आपके साथ, यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। 6:32 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके दोस्तों में से कितने ऐसे दोस्त हैं जो बहुत बेइंतहा मेटिकुलस है, लाइक वेन एवर दे डू समथिंग दे आर लाइक टू द निटी ग्रिटीज के भी अंदर अगर उनको घुसना अलाउड हो तो वो घुस जाए। सो वेल भाई, इस वीकेंड में मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से मिली एंड वहां पर नाउ द फ्रेंड हु इज ट्यून्ड इन राइट नाउ, शी वाज आल्सो देयर विद मी एंड वी ऑल वर सिटिंग टुगेदर। ओके, सो हमारी एक दोस्त है, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, जस्ट हमारी एक दोस्त है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे खाने पीने की बात कर रहे थे एंड माय स्टाइल ऑफ थिंक इज कि मुझे कुछ चीजें आती हैं एंड वो कितनी बार भी रिपीट हो सकती है बिकॉज आई नो दैट आई कैन डू दीज थिंग्स बेस्ट। सो जब भी खाने की बात आती है कि मैं ठीक है ये वाला हिस्सा मैं कर सकती हूँ बिकॉज आई नो आई कैन डील विद इट, कितनी बार भी रिपीट हो जाए मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। बट हमारी दोस्त जो है शी हैज मेड नोट्स, जी उन्होंने अपने नोट्स बना के रखे हैं अपने फोन में कि कौन सी डेट पे जब किसी को बुलाया था तो मैंने क्या क्या बनाया था। एंड उसका जवाब यह आया जब मैंने पूछा लाइक व्हाई इज दैट, सो दैट द नेक्स्ट टाइम दैट पर्सन कम्स टू हर हाउस उसको वो कुछ और डिफरेंट खिला सके एंड शी शुड नॉट रिपीट द सेम डिशेस विद दैट पर्सन। एंड मतलब मैं आई वाज सो टच्ड, सुनते ही मेरे को इतना ऐसा हो गया व्हाट। So there are people existing on this planet who are taking that extra care and effort to think something like that, ki agar aap agli baar unke ghar mein ja rahe ho they are ensuring that you aapka khana repeat na ho. I mean like really I was so touched, so very touched. And I made sure, I told her that, you know, Monday ko jab main show karungi, I am definitely going to talk about you because I have not known a friend of mine being such, have such beautiful trait. Yeah. Kudos to people like them. Like seriously, hands down. Aapka koi aisa dost hai, mujhe zarur batayega agar aapka dost kuch aise meticulous cheeze karte hain, jisse, you know, dil chhune wali baat ho jati hai. Nahi. 9158963 पर जरूर बता सकते हैं। लेकिन अंकिता राइट ना हियर राइट नाउ योर रिक्वेस्ट वाला गाना आई एम गोना प्ले हियर एंड लेट्स एंजॉय टुगेदर। गुड इवनिंग।
2: मैंने

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra, Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला, मस्ती बॉयस आप

0: तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले
1: बड़े बड़े हिट सुनो
0: सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव कौन सिंगापुर सिंगापुर भाई ये मैं नहीं अब ये जो आया है वो कह रहा है और अब मैं भी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव एंथ्रॉप के साथ मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में भाई सिंगापुर जो है हैज वंस अगेन प्रूवन अपना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बाय रिक्लेमिंग द टॉप स्पॉट इन 2026 का IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग में भाई लास्ट ईयर ये सेकेंड हमारा जो सिंगापुर था वो सेकेंड प्लेस पर था लेकिन अब to the top. I mean, number one की आदत सी अब तो है like that. वो गाना बिल्कुल गा सकते हैं जो मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगी. Now the ranking which evaluates 17 economies across economic performance, government की efficiency, business efficiency and infrastructure. And it showed that Singapore excelling specially in business efficiency where it is placed first globally. It also ranks strongly across trade, productivity, investment and scientific infrastructure में काफी आगे रहा. Now, despite there were some weaker areas like attitudes and finance and the overall performance highlights jo hai Singapore ka resilience amid global uncertainty inflation ka pressure and the geopolitical challenges I think man at the task the tick truly Singapore ne overtake kiya Hong Kong and former Switzerland ko is list mein yep East or West, Singapore is the best. चाहे वो competition की ही बात है. If there is a competition and there is like ranking, I think passport हो जाए, cleanliness हो जाए, safety हो जाए, Singapore is always at the top, right? So proud, so very proud. Good.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो 7 बजे के उस पार आप सभी का स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। और भाई बात कुछ ऐसी है कि भाई फीफा वर्ल्ड कप का जादू इट्स काइंड ऑफ एवरीवेयर। लास्ट आवर आई वाज टॉकिंग अबाउट द जापान का मैच एंड एवरीथिंग। भाई लेट्स कम टू सिंगापुर। सिंगापुर में ही आपको MRT की तरफ लेकर चलते हैं। देयर इज दिस इमर्सिव 6-केबिन फुटबॉल म्यूजियम MRT ट्रेन विच इज सेलिब्रेटिंग 5 फीफा वर्ल्ड कप विनिंग नेशंस विथ रिच ट्रेडिशंस जैसे ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, फ्रांस एंड स्पेन। एंड ये जो केबिन है इट पेस ट्रिब्यूट टू सिंगापुर फुटबॉलिंग स्पिरिट एज वेल। जो एक एक केबिन है इसका इट्स डिवोटेड टू वन नेशन विथ वर्ल्ड कप ट्रिविया कवरिंग ऑल द लेजेंडरी प्लेयर्स एंड जो कि उन्होंने जो मैचेस जो है खेले ऑफ द नेशन। एंड यस काफी इंटरेस्टिंग इस पूरे के पूरा माहौल को बना रखा है। ट्रेन ऑपरेट्स फ्रॉम नाउ टिल 19th of July ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ की लाइन्स पर विद नो फिक्स शेड्यूल्स। सो या इट्स काइंड ऑफ कि भाई यू हैव टू बी लकी इनफ टू बोर्ड इट इफ यू हैव टू फाइंड इट आउट कि ये उसी वाले में आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। वेल इफ यू हैपन टू सिट इन दिस फीफा वर्ल्ड कप वाले ट्रेन पर तो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू टेक अ वीडियो एंड सेंड इट टू अस एट 9158963। आई एम श्योर कोई ना कोई तो चढ़ा ही होगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं अगर मैं बैठी या हम में से कोई बैठा तो देन डेफिनेटली वी विल शेयर दैट वीडियो विद यू एज वेल। बट इट्स सो इंटरेस्टिंग राइट, एक कितनी अच्छी एक बात और एक अच्छी स्पिरिट जो है ये फैलाता है। द होल आइडिया हाउ अ गेम ब्रिंग्स टुगेदर सो मेनी पीपल सो मेनी कंट्रीज, अमेजिंग। स्पोर्ट्स को इसीलिए तो माना जाता है लाइक राइट देयर। एंड फिलहाल हमारा दिल गा रहा है, अमित कह रहे हैं कि ही हैड द बेस्ट सैटरडे है वो लास्ट वीकेंड, तो आई कैन नॉट जस्ट कम आउट ऑफ इट। सो आई वाज लाइक आई हैव द परफेक्ट सॉन्ग फॉर यू, दिस इज मस्ती वॉइस आपकी चॉइस क्योंकि सैटरडे। अमित हियर यू गो, आपकी चॉइस बिल्कुल।

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Musti Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यू से वी प्ले।
0: आज यूके के किस प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है, क्या आप उनका नाम मुझे बता सकते हैं? डू यू नो हु ही इज? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रहा है। बताओ बताओ, इसके बारे में तो बात कर ही रहे थे। एंड दैट्स द लेटेस्ट व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। सो आई एम श्योर दैट आप में से कई सारे लोग अभी मुझे यहाँ पर बस बात करते करते ही मैसेज भेजते हैं कि ओ यूके प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अभी अभी रेजिग्नेशन, ये है मोर नाम, इनकी तो तुम बात कर रहे हो ना। भाई बात तो हम कर रहे हैं, बात आपने काफी ध्यान से भी सुनी, या आप को ये सारी चीजों से अपडेटेड रहना काफी ज्यादा पसंद है। नॉट ओनली दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी थिंग्स जो है, आप जब इस तरह के सेटअप्स में जाते हो और यू नो आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं, सो यू आर इन्फॉर्म्ड, यू नो व्हाट इज हैपनिंग एवेयर। बट नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू फ्लेक्स दैट नॉलेज माई डियर फ्रेंड्स। भाई लायन सिटी चैलेंज जो है, इट इज ऑल अबाउट दैट। अब आपने क्विज कॉन्टेस्ट तो देखे ही होंगे, बट दिस इज वन ऑफ अ काइंड क्विज कॉन्टेस्ट। अब मैं बिल्कुल अंदर, बहुत अंदर की बात है तो बिल्कुल नहीं बता सकती, धीरे धीरे करके आपको रिवील किया जाएगा कि किस किस तरह के राउंड्स जो है वो है, कहाँ कहाँ क्या क्या जीत सकते हो। जितने में आप एंट्री कर रहे हो उतना ही वापस आप जो है उसको कमा सकते हो। यस, ओनली दैट मच आई कैन रिवील, एंड देन फ्रॉम देयर मच मोर। बट डेफिनेटली वन थिंग इज फॉर श्योर, बिकॉज इट्स द स्मार्टेस्ट गेम शो यू कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन, you will have the world class experience once you are into this world. ये तो एक हो गई बात। अब इसके फर्स्ट फेज में कदम रखने के लिए आपको हमें टाइप करके भेजना है लायन, LION. वंस यू सेंड दैट टू अस, व्हिच मींस दैट यू आर शोइंग योर इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन द लायन सिटी चैलेंज, हम आपको भेजेंगे एक क्वालिफाइंग यू नो क्वेश्चन, दो आपके पास पहुंच जाएंगे अगले राउंड तक पहुंचने के लिए। आपने उनके जवाब देने हैं, फिर आप अगर सही जवाब दोगे तो अगले राउंड में पहुंच जाओगे, अगले राउंड में पहुंचेंगे तो वहां से फिर आपको गाइड किया जाएगा कि अब आपको करना क्या है। बट डेफिनेटली भाई करना तो जरूर है जिंदगी में, ये सारी चीजें एक बार ट्राई तो करनी ही करनी चाहिए। सो वेल वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू लायन सिटी चैलेंज और वहां पे आपसे मिलने के लिए, जहां पे स्पॉटलाइट होगा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाट यू टीच योर किड्स एज वेल, राइट? तो फिर टीच वही करो जो आप खुद प्रीच करो। वाह वाह वाह, इसी बात पे एक तो लायन लिख के भेज दो, ठीक है, एंड देन पार्टिसिपेट, एंड देन लेट्स गो अहेड प्ले दैट अमेजिंग लायन सिटी चैलेंज गेम। एंड बाकी रही आज की बात, वो है कि थोड़ा देर जो है और हमारे पास है 8 बजे तक का टाइम। अपना कोई भी चहेता गाना हो आपको सुनना हो तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं तो अच्छे गाने प्ले कर ही रही हूँ, दैट इज फॉर श्योर। मेरी मस्ती 24/7 लाइव पर, स्टे ट्यून्ड विद मी।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 7:32 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में आओ हुजूर तुमको ले चले सिंगापुर की सड़कों पर और बताया जाए इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स अटवास आफ्टर टोकुआ रोड हैवी ट्रैफिक मिलेगा ऑन BKE टुवर्ड्स वुडलैंड्स एट वुडलैंड्स चेक पॉइंट एग्जिट और हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स अचांगी बिटवीन BKE एंड बुकेट बैथॉक ईस्ट एवेन्यू 3 सो वेल ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट बाकी आई एम गोइंग नट्स बट इट इज नॉट ओनली मी हु इज गोइंग नट्स देयर आर लॉट ऑफ other people also who are going nuts about what let me come back after this break and tell you

0: shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows, by popular demand, relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
2: वाजी, क्या बात जी?
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.
4: आपके हिट्स, आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला. मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस. You say, we play.
5: भाई सिर्फ हम ही नट्स नहीं जा रहे हैं, ऑल द डैडीज आर आल्सो गोइंग नट्स, एंड इन फैक्ट जो कोई खाएगा वो नटी नटी हो जाएगा. नटी नटी नहीं, नहीं नहीं, नटी नटी हो जाएगा. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं वन ट्रम के साथ यहाँ पर चल रहा है. ऑफ कोर्स मस्ती बॉयज आपकी चॉइस, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नट्स तो आपकी चॉइस होनी चाहिए ggmartonline.com. व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई. तो हाल ही में जब हमने फादर्स डे का लास्ट वीक कॉन्टेस्ट किया, एंड यू नो यू वुड हैव सीन these amazing dads jinke chote chote you know yaad hai and all bilkul humne post kiye humne social media par, and we as a token of appreciation and jo contest mein jeete unke paas pahunche ye wale hamare ggmartonline.com ke hampers, aur humne bataya hi tha ki usme jitne bhi hum itne amazingly baat karte rehte hain ki bhai chahe macadamia nuts ho, roasted and salted pistachios ho, hazelnuts ho, pumpkin seeds ho, assorted pack of nuts ho, एक तो अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस, राइट, एंड उसके ऊपर से वैरायटी. ये कृषिवल के नट्स जो है जो कि अमेजिंग है. अमेजिंग मतलब एक तो ऑर्गेनिक है, सब कुछ इतना सही रहता है कि जब भी हम ggmartonline.com की बात करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यू ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ लाइक प्रिजर्वेटिव फ्री और ऑर्गेनिक दे आर. अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो रिसीव द गुलकंद एंड द जामुन ट्राइंगल्स आई हैव बीन रेविंग अबाउट. इट इज रियली really good. 135 gram ka jo hai inka ek box aata hai, which is $4. Okay, they are really really nice, delightful sweet treat, and it's a perfect blend of this jamun flavor with this crispy golden exterior and this soft melt in your mouth center. Ye jo triangle hai, it delivers that authentic taste of that confectionery with that modern twist. इट्स आइडियल. आप अपने घर में जो है लोग बुलाते हैं, डिनर विनर कराते हैं, उसके बाद इफ यू ऑफर देम समथिंग लाइक दिस विच इज सो डिफरेंट एंड यूनिक, दे गिव यू दैट रिच फ्रूटी फ्लेवर विच अपील्स टू बोथ जो ट्रेडिशनल स्वीट लवर्स हैं उनको भी, एंड जो थोड़ा सा यू नो खट्टा मीठा पसंद करते हैं उनको भी, एंड इट्स समथिंग यू कैन इंडल्ज इट. यू कैन स्टोर इट एयर टाइट कंटेनर में उसकी फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए, एंड यू कैन जस्ट एंजॉय द टेस्ट ऑफ एंड द फ्लेवर ऑफ जामुन इन एवरी बाइट, एंड इट इज जस्ट अमेजिंग. जस्ट ठीक है, एक बार मेरे कहने पर ट्राई करके देखना ये द जामुन ट्राइंगल्स फ्रॉम ggmartonline.com. यू विल लव इट. या गलत बात तो मैं करती नहीं, गाने सुनो अभी अभी के अभी, टाइम थोड़ा सा बचा है, कोई गाना सुनना हो 9158963 बता दे मुझे.

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ ही यहाँ पर चल रहे मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। एंड जैसे जैसे हम लोग और करीब आते हुए जा रहे हैं शो के खत्म होने में, अभी अभी जो है यहाँ पे मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, तो अब बात करने के बाद पहले मुझे वो गाना ढूंढना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आई ट्राई एंड प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू, क्योंकि ये तो हमारा काम है और आज के दिन में तो बिल्कुल कोशिश पूरी यही रहती है कि जो भी आपकी डिमांडे हो उसको पूरी तरह से पूरी की जाए। बट यहां से फिलहाल वापस से चलते हैं जापान, जिन्होंने रेज कर दिया है वीजा फीस फॉर ऑल द फॉरेन नेशनल्स बाय अप टू 5x। दैट इज राइट, जहां पर मैं अभी पिछले ही घंटे तारीफ कर रही थी कि उनके फुटबॉल टीम एंड ये और कितना डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग, ये भी वहीं से आ रहा है। सो वेल, जापान जो है उन्होंने रेज कर दिया है फीस वीजा का फॉर द फॉरेन नेशनल्स बाय अप टू 5x, मार्किंग अपना फर्स्ट सच इंक्रीज इन नियरली 5 decades। 1st of July से ये इफेक्टिव हो जाएगा। द फी फॉर अ सिंगल एंट्री वीजा विल राइज फ्रॉम 3,000 yen टू 15,000 yen, और मल्टी एंट्री वीजा जो है इट विल कॉस्ट यू 30,000 yen अप फ्रॉम 6,000 yen। दैट इज राइट। ये सारी चीजें पता करके रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको तो पता ही है 2027 का सिंगापुर का जो है छुट्टियों वाला लिस्ट भी निकल चुका है मेरे दोस्तों। तो जो जो पहले से बैठकर प्लान कर रहे हैं, एंड आजकल तो मैं देख रही हूँ जापान हर किसी की जो है लिस्ट में है, मेरी भी है बट कब जाऊंगी वो पता नहीं है, पर ठीक है, डिटेल्स नोट करके रखने में किसका क्या ही इजारा है ना। नंदा जी, नंदा जी आप फिलहाल ये वाला गाना सुनो, तब तक इसके बाद मैं आपका वाला गाना भी पक्का से प्ले करती हूँ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

ऐसा कोई गाना नहीं जिसको हमने जाना नहीं, जाना जाना। नंदा जी ने मुझे यहाँ पर बस जाते जाते बिल्कुल कहा, कैंड्रा कैन यू प्ले दिस सॉन्ग, इट्स एन ओल्ड मूवी स्टारिंग पद्मिनी एंड संजय दत्त। एंड आई वाज लाइक आउट ऑफ सिलेबस वाले ऐसे क्वेश्चंस से हम बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ, फ्लाइंग कलर्स के साथ पास

0: 11 बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: This is what I live for. जब कोई अपना पसंदीदा गाना हमारे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सुनता है और वो चेहरे पे स्माइल आती है, वो साथ में उसके थोड़ा गुनगुना लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बस मेरा दिन बन गया। आई होप दैट आपका भी दिन, मतलब आपकी शाम बन गई। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, बहुत ज्यादा समय तो यहाँ पे बाकी रहा नहीं है। यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग अहेड। कल सुबह होगी आपसे मुलाकात और मस्ती का मंत्र एकदम टाइम पे पहुंच जाऊंगी, तो आप भी सुबह सुबह ट्यून इन कर लीजिएगा। फिर से कुछ बातें करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे, एंड वी विल जस्ट हैव रियली रियली गुड टाइम। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: जिंदगी में जीत और हार हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत गेम जय सिंगापुर। सारू जय अखा सिंगापुर मारू जय, और मैं हूं आपका समर रेडियो 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूं एक और नया एपिसोड लेजेंड्स का। लेजेंड्स में द अचीवर सीरीज में आज हम आपसे बात करने वाले हैं जिनकी वो ऐसे ही हैं जिन्होंने ठान लिया और अपने सपनों को सच करके दिखाया। मैं बात कर रहा हूं नगवरा रामो राव नारायण मूर्ति की, जिन्हें हम सब बहुत अच्छे से नारायण मूर्ति के नाम से जानते हैं। तो आज लेजेंड्स में समर के साथ आप सुनेंगे इन्हीं की कहानी, फाउंडर ऑफ इंफोसिस नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति साहब को फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर बोला जाता है। इनकी कहानी शुरू होती है कर्नाटका में कोलार से, जहां इन्होंने अगस्त 1946 में जन्म लिया एक हाई स्कूल टीचर के घर में। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भले ही स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन शुरू से ही पढ़ाई में वो बहुत ही ब्राइट थे, और इसी वजह से वो अपने टीचर्स के फेवरेट भी रहे हमेशा से।

उनका ख्वाब था कि वो आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, जिसके लिए उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। पढ़ाई के बाद नारायण मूर्ति जी ने आईआईएम अहमदाबाद में एज अ चीफ सिस्टम्स प्रोग्रामर काम करना शुरू किया और वहां उन्होंने इंडिया के पहले टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर काम करना शुरू किया और इसके साथ उन्होंने ECIL के लिए बेसिक इंटरप्रेटर डिजाइन किया और इम्प्लीमेंट भी किया। अब साहब नारायण मूर्ति साहब उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि वो जिंदगी भी क्या जहाँ सीखने को कुछ ना मिले, और नारायण मूर्ति ने जिंदगी को ऊपर और नीचे जाते आते कई बार और खूब अच्छे से करीब से देखा। जिंदगी ही उनकी सबसे बड़ी टीचर रही। जानेंगे थोड़ी देर में कि कैसे नारायण मूर्ति साहब ने अपने बिजनेस को शुरू करने की ठानी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इसमें सक्सेस हासिल नहीं हुई, सब कुछ बताऊंगा यहीं पर। बस जुड़े रहिएगा समर के साथ रेडियो 24/7 लाइव पर सुनते हुए लेजेंड्स।

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
3: वेलकम बैक लेजेंड्स में आप हैं समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर और आज बात हो रही है फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर नारायण मूर्ति साहब की। हमेशा से ही आईआईटी से इंजीनियरिंग का ख्वाब देखने वाले नारायण मूर्ति साहब ने अपने इस ख्वाब को हकीकत की शक्ल दी, लेकिन ये तो जितने देखने चाहें उतने कम पढ़ते हैं। और फिर इन्होंने एक और ख्वाब देखा और वो था 70s में खुद की कंपनी शुरू करने का ख्वाब, और उन्होंने इसे हकीकत का रूप दिया अपनी पहली कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स के रूप में, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग कंपनी थी और इनका पहला बिजनेस वेंचर रही। यही वो वक्त था जब नारायण मूर्ति की जिंदगी में एक और स्टोरी चल रही थी, वो थी इनकी लव स्टोरी। यही वो वक्त था जब ये अपनी वाइफ, जो उस वक्त तक वाइफ नहीं हुई थी, सुधा जी, सुधा मूर्ति जी को डेट कर रहे थे और उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन सुधा जी के फादर की एक ही शर्त थी कि शादी तभी होगी जब नारायण जी कोई डिसेंट जॉब कर लें, ताकि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, उनकी बेटी की चिंता उन्हें ना रहे। लेकिन नारायण मूर्ति उस वक्त भी यही चाहते थे कि वो अपनी कंपनी और अपनी मर्जी दोनों के ही मालिक बने रहें और वो करें जो उनका दिल चाहता है। लेकिन ये बात उनके और सुधा जी के बीच आ रही थी। अपने काम के साथ साथ वो सुधा जी को बहुत चाहते थे और दोनों ही, यानी उनका काम और सुधा जी, उनकी जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर क्या हुआ? ऊपर वाले ने मुश्किलें आसान की या फिर जो हुआ वो सही नहीं हुआ, ये तो

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: लेजेंड्स पर आप हैं समर के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर नारायण मूर्ति साहब की। वेलकम बैक। तो साहब, एक तरफ थी मूर्ति साहब की मोहब्बत सुधा जी और दूसरी तरफ था उनका काम। उनके होने वाले ससुर साहब ने क्लियर कर दिया था कि अगर उनके पास एक जॉब होता है तो उनकी शादी सुधा जी से राजी खुशी हो सकती है। लेकिन ये वही वक्त भी था जब उन्होंने अपना पहला बिजनेस वेंचर सॉफ्ट्रॉनिक्स शुरू किया ही था। ये अफसोस की बात हुई उनके साथ कि ये 1.5 साल चला और 1.5 साल में सॉफ्ट्रॉनिक्स को मूर्ति जी को बंद करना पड़ा और वक्त ऐसा आया कि मजबूरन और न चाहते हुए भी उन्हें जॉब करने के लिए खुद को राजी करना पड़ा और फिर उन्होंने ज्वाइन किया पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स पुणे में और वो वहां जनरल मैनेजर बन गए। और यहाँ चीजें इनके फेवर में न होते हुए भी इनके फेवर में काम कर गई, क्योंकि एक तरफ तो उनका बिजनेस वेंचर बंद हुआ था, डूब गया था, लेकिन दूसरी तरफ इस वजह से वो अब अपने फादर इन लॉ की एक ही शर्त जो थी उनका जॉब करना वो पूरी कर रहे थे और फिर उन्होंने भी खुशी खुशी सुधा जी से उनकी शादी कर दी। इस शादी के जल्द से जल्द होने की एक और वजह थी और वो ये थी कि इनका ट्रेनिंग के लिए US जाना और वो चाहते थे कि US जाने से पहले वो शादी कर लें। मूर्ति जी को अपनी पहली मोहब्बत सुधा जी तो मिल गई, लेकिन एक और मोहब्बत जिसके लिए उनका दिल धड़क रहा था वो अभी अधूरी थी और वो थी उनकी कंपनी इंफोसिस की शुरुआत, जो अब तक नहीं हो पाई थी और अगर सुधा जी उनकी जिंदगी में नहीं आती तो शायद न भी हो पाती। इंफोसिस की शुरुआत में सुधा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा और वो कैसे और क्या रहा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आप बस सुनते रहिए।

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी।
2: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
2: क्या जी?
3: जीजी, जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
2: वाजी, क्या बात जी?
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: उठे सबके कदम, देखो रंग।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज। और आज की जो लेजेंड है नारायण मूर्ति साहब, उनके मामले में ये बात 100% सही है। नारायण मूर्ति वो इंसान जिन्होंने मिट्टी को सोना बना दिया, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में मेहनत और वक्त बहुत लगा। शादी से पहले नारायण जी पार्टनी कंप्यूटर सिस्टम्स में काम कर रहे थे, लेकिन शादी के बाद उनकी वाइफ सुधा जी ये नोटिस कर रही थी कि उनके हस्बैंड खुश नहीं है। वो न सिर्फ नारायण जी की वाइफ है बल्कि उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है, और उन्होंने उस समय ये समझ लिया था कि नारायण मूर्ति किस बात से नाखुश है, और वो वजह थी मन मर्जी का काम न कर पाना जिसके लिए फंड्स की जरूरत थी। फिर एक दिन सुधा जी ने नारायण जी को बोला कि वो अपना काम फिर से शुरू करें और घर के खर्चे की चिंता बिल्कुल न करें, कम से कम 3 साल तक सब कुछ भूल जाएं, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुधा जी खुद संभाल लेंगी। यही नहीं, उन्होंने बुरे वक्त के लिए जो 10,000 रुपए सेव किए थे उन्होंने वो भी नारायण जी को दे दिए ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए, और यहाँ से नारायण मूर्ति के चेहरे की रौनक वापस आना शुरू हो गई। लेकिन हर एक चीज जिसे दिल से चाहा है वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है साहब। उतार चढ़ाव तो खूब आए, यहाँ तक कि उनके साथियों ने कंपनी छोड़ने की बात भी की, लेकिन बात तो वही है कि जिंदगी में जीत और हार हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। और नारायण मूर्ति ने अब की बार ठान लिया था कि अब वापस नहीं जाना है, और उन्होंने अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जी जान लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इंफोसिस की शुरुआत कैसे हुई, ये काफी बड़ी इंस्पिरेशन है फॉर ऑल दोस पीपल जो आज अपने बिजनेस के इनिशियल स्टेज में हैं। सुनाते हैं आपको इंफोसिस की।

0: सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: इंफोसिस की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब नारायण जी का सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी का पहला वेंचर फेल हुआ, क्योंकि ना वो फेल होता, ना नारायण जी जॉब करते और ना ही उनकी शादी सुधाजी से होती, जिनका इंफोसिस शुरू करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा और यहाँ ये तैयारी किस्मत कर रही थी उनके लिए। वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। और देखिए, हार्ड वर्क के साथ इतना सा लक भी बहुत जरूरी होता है, वरना कई बार चीजें अटक जाती हैं। और यहां लक ने ये काम किया कि सुधा जी उनकी जिंदगी में आई और सुधा जी के लक से वो जो अटकी हुई चीज थी वो निकल आई। उन्होंने उन्हें ताकत दी, उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया। 10,000 से बिजनेस करने की शुरुआत करने की सोच के बाद नारायण जी ने 1981 में जनवरी की एक सुबह अपने 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेंड्स को अपने घर इकट्ठा किया और डिस्कस किया कि किस तरह वो सॉफ्टवेयर कोड्स लिखने वाली एक कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं। और जल्द ही उन्होंने पार्टनी कंप्यूटर्स छोड़ दी और अपनी नई कंपनी को शुरू करने के काम में लग गए, जुट गए। और 6 महीने की अग्रेसिव मेहनत के बाद 2 जुलाई 1981 में इंफोसिस का रजिस्ट्रेशन हुआ। और उस वक्त इंफोसिस का नाम था इंफोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके को फाउंडर थे नारायण मूर्ति, नंदन निलेकनी, एनएस राघवन, एस गोपाल कृष्णन, एस डी शिबुलाल, के दिनेश और अशोक अरोड़ा। 1982 में ये सब पुणे में शिफ्ट हो गए और एक छोटा सा लोन लेकर इन्होंने एक घर खरीदा, जिसके कमरे में इन्होंने अपना ऑफिस शुरू किया। हालांकि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एनएस राघवन हाउस दादर मुंबई था, लेकिन नारायण मूर्ति के घर के सामने वाला कमरा असली ऑफिस था। ये कहानी है तो रियल, लेकिन कई जगह पर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती है। उस छोटे से अपार्टमेंट में जब ऑफिस चलता था तो 6 दोस्त अपने काम में लगे रहते थे और नारायण जी की वाइफ सुधा जी कभी क्लर्क, कभी प्रोग्रामर तो कभी कुक का काम किया करती थी। और साथ ही साथ अपने घर को चलाने के लिए सुधा जी ने वालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एज अ सीनियर सिस्टम एनालिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। ये सारी कहानी चल रही थी पुणे में, लेकिन उन लोगों को भी ये नहीं पता था कि उन्हें अपनी बेस को मुंबई से पहले पुणे और फिर पुणे से बेंगलोर शिफ्ट करना पड़ेगा। इंफोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर नारायण मूर्ति की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी। वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर लेजेंड्स यानी कि उन शख्सियतों की कहानियां जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। नारायण मूर्ति साहब स्टार्टअप की दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं और इंफोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड शुरू करने के बाद उन्होंने उन लोगों के बारे में भी सोचा जो इनकी ही तरह आज के टाइम में अपना बिजनेस शुरू करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इनके इस कदम के बारे में बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी तो लेजेंड्स में इस कहानी को वहीं से शुरू करने की बारी है जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। तो चलिए अब आपको बताया जाए कि वो क्यों और किस तरह इंफोसिस को लेकर बेंगलोर पहुंची। इंफोसिस को अपना पहला यूएस बेस्ड क्लाइंट डेटा बेसिक्स कॉरपोरेशन 1983 में आखिर मिल ही गया और इसी के साथ ये 6 लोगों की कंपनी बेंगलोर में आ गई। लेकिन नारायण मूर्ति को अपनी फैमिली के बिना ही बेंगलोर शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि उनके बेटे को इन्फेटाइल एक्जीमा था। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए बीच में रुकावटें खूब आती हैं। सक्सेसफुल वही होते हैं जो इस राह पर चलते हुए थककर रुकते नहीं हैं, और नारायण मूर्ति रुकने वालों में से थे भी नहीं, खासकर तब जब उनकी वाइफ उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी। और धीरे धीरे इंफोसिस टीम के 6 के 6 सिपाही अपनी फैमिलीज के साथ बेंगलोर पहुंच गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि अब इन्होंने अपनी कंपनी के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स रखे थे जो कि ये थे कि किसी की भी वाइफ कंपनी को चलाने में इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि इसके लिए अपना 100% देना होता है और कोई भी नहीं चाहता कि एक फैमिली के दोनों मेंबर्स अपनी फैमिली को छोड़कर काम में 100% दे रहे हो और फैमिली पर ध्यान देने वाला कोई हो ही नहीं। दूसरा रूल ये था कि कोई भी मेंबर इंफोसिस में पोस्ट द एज ऑफ 65 काम नहीं करेगा ताकि यंगर टैलेंट्स को हाई पोस्ट्स पर काम करने का मौका मिल पाए। और एक रूल ये भी था कि किसी के भी बच्चे कंपनी के फ्यूचर में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिससे कि कंपनी में पार्शियलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के रास्ते बंद हो जाएंगे। पर आपको पता ही है कि एक ऐसा वक्त आया जब इंफोसिस भी बंद होने के रास्ते पर था। ऐसा क्यों हुआ और नारायण मूर्ति ने ऐसा क्या किया कि कंपनी

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: 1/2 kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
3: क्या जी?
4: GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, checkout करो और grocery at your doorstep.
3: वाजी, क्या बात जी।
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: लेजेंड्स पर समर के साथ हैं आप, और आज बात चल रही है उनकी जिनकी मेहनत और हाउ टू बिल्ड एन एम्पायर के किस्से, जहां में लोग एज एन एग्जांपल देते हैं नारायण मूर्ति साहब। इंफोसिस के शुरू होने और बेंगलोर पहुंचने के बाद लेट 80s में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया विद कुट सेलमन एसोसिएट्स और US में जिसका पब्लिक फेस बने गोपाल कृष्णन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जॉइंट वेंचर बाय द एंड ऑफ 1989 कोलैप्स हो गया। ये सिर्फ इस जॉइंट वेंचर का ही कोलैप्स नहीं था, इसका मतलब था कि कंपनी भी अब कोलैप्स की वर्ज पर थी, और इस वक्त ये कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया, जिसके चलते इन 6 लोगों की टीम में एक दरार आ गई। नारायण मूर्ति के एक पार्टनर अशोक अरोड़ा ने अपने शेयर्स बेच दिए, जिससे कि बाकी सारे पार्टनर्स हक्के बक्के रह गए। नारायण मूर्ति, जिनका ये कहना था कि इफ वी वांट टू क्रिएट अ कंपनी वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, उन्होंने अपने बाकी पार्टनर्स को कहा कि अगर वो अपने शेयर्स बेच कर जाना चाहते हैं तो नारायण जी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सबके शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके इस ऑप्टिमिज्म को देखते हुए बाकी सारे पार्टनर्स मोटिवेट हुए और यहाँ से इंफोसिस की गाड़ी नीचे नहीं ऊपर की तरफ चलने लगी। सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि काम को वो आपस में बांट लेंगे और सबको उनके टैलेंट के हिसाब से टास्क दिए जाएंगे, जिसमें नारायण मूर्ति की टैलेंट की पहचान की वजह से उन्हें टैलेंट को काम में डिवाइड करने का टास्क यानी मैनेजमेंट का काम मिला, और यहां से इन्होंने पीछे पलटकर फिर कभी नहीं देखा। कुछ ही टाइम में कंपनी ने अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस खोला। इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन से कंपनी को बहुत फायदा हुआ। नारायण मूर्ति के मैनेजमेंट स्किल्स एंड हिज आई फॉर परफेक्शन ब्रॉट अ लॉट ऑफ बिजनेस फॉर द कंपनी, और इनकी नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी, जिसके तहत अगर अंडर द टेबल डील्स आई तो इस बात को कंपनी ने बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया, विच सेट देम एंड देयर स्टैंडर्ड्स अपार्ट। चलिए कुछ ही देर में मैं आपको नारायण मूर्ति साहब का एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ, जो ये बताएगा कि उनमें कितनी पेशेंस है। बताता हूँ थोड़ी देर में, आप बस बने रहिए समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न

0: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: इंडियन आईडी सेक्टर के फादर नारायण मूर्ति की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेजेंड्स के जीवन सीरीज में आज उन्हीं की हो रही है बात। इंटरनेशनल बिजनेस पार्टनर्स पर इंपैक्ट बढ़ाने के लिए नारायण मूर्ति साहब ने इन्वेस्ट किया इन बिल्डिंग ह्यूज वर्ल्ड क्लास कैंपसेस जो कि इंडिया में किसी भी कंपनी के हेडक्वार्टर से भी बड़े थे, ताकि कस्टमर्स को लगे कि वो एक ग्लोबल ऑफिस में है। He knew exactly when and where and how to react. And in the next 2 years, company ke global development centers shuru kiye gaye Fremont, Toronto mein. Aur isi ke saath unhone shuru kiya pehla European office in the UK. Aur 1999 mein to kamaal ho gaya. Company grew by many folds when it announced that it had touched revenues worth $100 million and had also got listed on Nasdaq. Isse zyada tareef ke qabil to ye tha ki us time Infosys was known to be amongst the 20 biggest companies in the world by market capitalization on the Nasdaq. ये वो वक्त था जब Infosys ने अपना massive worldwide expansion plan शुरू किया, और इसी के साथ they went on to open a list of offices in different parts of the world, including Germany, Sweden, Belgium, Australia, and 2 development centers in the US. और इसी के साथ उन्होंने लॉन्च की बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज। नारायण मूर्ति साहब के पास एक पारखी नजर है। अगर हम किसी इंसान से मिलेंगे तो हम जो उसके बारे में सोचेंगे उससे कई गुना हटके नारायण मूर्ति साहब के पास वो आंख है, वो परख है जो उस इंसान के अंदर वो खूबियां तलाश लेती है जो उन्हें चाहिए। और ये बात एक दिन साबित हुई जो कि अपने आप में एक किस्सा है, और इस किस्से को अपने शो का हिस्सा बनाऊंगा मैं सिर्फ थोड़ी देर में। मैं हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आप बने रहिए, शो सुनते रहिए लेजेंड।

0: Are you ready?
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी?
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.
4: Radio must be 24/7 live पर समर के साथ आप सुन रहे हैं Legends Achievers.
5: Welcome back, मैं हूँ समर, Radio must be 24/7 live पर, और आज हमारे साथ हैं Father of Indian IT Sector, यानी कि नारायण मूर्ति साहब। उन्हीं की कहानी आप सुन रहे हैं मेरी जुबानी। नारायण मूर्ति साहब की नजर जबरदस्त पारखी थी, और इस बात से लोग और तब ज्यादा वाकिफ हुए जब इंफोसिस की एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग यानी AGM में एक बंदा बहुत सवाल कर रहा था और उसके सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनफैक्ट जितने भी लोग आसपास बैठे हुए थे वो उसकी इसी बात से बहुत इरिटेट हो गए थे, और लोगों को तो ये भी लग रहा था कि शायद अब नारायण मूर्ति ही इसके सवालों से परेशान होकर इसे डांट दें या चुप करा दें। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने उसके सभी सवालों का जवाब दिया बड़ी ही पेशेंटली। एंड टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ द ऑल प्रेजेंट देयर, नारायण जी ने मोहनदास पाई को अपनी कंपनी में हायर कर लिया। जी, वो इंसान मोहनदास पाई थे, और यही वो इंसान थे जिन्होंने इयर्स लेटर इंफोसिस को नैसडेक की लिस्ट में लाने में मदद की थी। नारायण मूर्ति की नजर लोगों में टैलेंट देखने में बहुत ही कमाल की है, और इसीलिए अपनी कंपनी में जब काम बांटने का काम आया तो इन्हें काम मिला था ये कि वो लोगों को उनके टास्क बताएंगे, भाई जिसके लिए इंसान के टैलेंट की पहचान होना बहुत जरूरी है। और खैर, ये भी अपने आप में एक कमाल का टैलेंट है। नारायण मूर्ति का सबसे फेवरेट स्टेटमेंट है, इन गॉड वी ट्रस्ट, द रेस्ट मस्ट कम विद डेटा। और जब कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेने की बात होती है तो वो वाकई में डेटा पर रिलाई करते हैं टू फाइंड एन आंसर। सिंप्लिसिटी से रहने वाले नारायण मूर्ति साहब का यह भी मानना रहा है कि पैसे में तब सबसे ज्यादा ताकत होती है, सबसे ज्यादा पावर होती है जब लोग उसे पूरी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल करें, और इसीलिए ये किसी के लिए भी चौंकने वाली बात नहीं है जब उन्होंने एनजीओ में बेसिक केयर और नरिशमेंट और नॉलेज के लिए अपने फॉर्च्यून को डोनेट करना शुरू किया। नारायण जी ने सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, और जिंदगी के सफर में न सिर्फ ऊपर वाले ने बल्कि कई लोगों ने भी उन्हें उनके कामों के लिए नवाजा है, सराहा है, पुरस्कृत किया है, अवार्ड दिए हैं। सन 2000 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2003 में अर्नस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर से, और गवर्नमेंट ऑफ यूके ने 2007 में उन्हें फेलिसिटेट किया कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से। फिर 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा, 2012 में द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने दिया उन्हें द हूवर मेडल, और 2013 में उन्हें मिला फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर इन द एशियन अवार्ड्स। नारायण मूर्ति जी का एक किस्सा ऐसा भी है जहां उन्हें समझ आया

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। टायर्ड बट नॉट रिटायर्ड, ये फ्रेज नारायण मूर्ति साहब पर बिल्कुल जचता है, क्योंकि इंफोसिस में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई सारी कंपनीज में कंट्रीब्यूट किया। जैसे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ HSBC रहे, ट्रस्टी ऑफ द रोड्स ट्रस्ट रहे, चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एशिया पैसिफिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशंस, और कई सारी यूनिवर्सिटीज और फाउंडेशंस के एडवाइजरी और काउंसलिंग बोर्ड का हिस्सा भी रहे हैं। अगर उनके इन सभी कामों को आज मैं डिस्कस करने लगूं ना, तो दिन कब गुजर जाएगा खबर भी ना होगी। लेकिन हाँ, गुजरे वक्त का एक किस्सा आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, और ये बात है 1970s की, जब नारायण जी अपने सोशलिस्ट विचारों की वजह से बुल्गारिया की जेल में 72 घंटों के लिए बंद रहे। लेकिन इस एक्सपीरियंस से भी उन्होंने सीखा ही है, और वो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब क्रिएशन, ये दो तरीके हैं जिससे कि पॉवर्टी को हटाया जा सकता है। और तब उन्होंने समझा कि जोश में होश खोने से अच्छा है कि इसके लिए काम किया जाए। एक सीधी सादी जिंदगी जीने में यकीन रखने वाले नारायण मूर्ति आज भी इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते हैं और एक बहुत ही हम्बल लाइफ जीते हैं। हाँ, लेकिन अगर बात हो किताबों की, तो वो यहाँ अपने बजट में कोई कटौती नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक है। और ये शौक सिर्फ उनका ही नहीं है, बल्कि इनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी को भी है, जो एक इंजीनियरिंग टीचर भी है और साथ ही साथ कई बुक्स की ऑथर भी है। तो उम्मीद करते हैं कि नारायण मूर्ति साहब की ये कहानी, फर्श से अर्श तक की कहानी, शून्य से शिखर तक की कहानी, आपको जरूर पसंद आई होगी। आप हमें अपने कमेंट्स लिखकर भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। अभी तो जाने का वक्त है, एक और नई शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा अपने इसी शो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और हाँ, जाते जाते करते जाइए कुछ वादे। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल, किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हवा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील कर सील
1: टाइट टाइट वेरी टाइट।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: ए वो ईद पे पिक्चर आ रही है ना,
2: कौन से?
1: बॉडीगार्ड, उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
3: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
4: तेरी।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: टूना, ओ टूना।
2: क्या रे?
1: मैं

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: पठे सर्वभयान् मुक्तो भविष्यति न संशयः।
1: एक ही ईश्वर है, उसका नाम ही सत्य है। There is one God and his name is the truth.

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pe.
1: सात बजकर हो चुके हैं 5 मिनट। गुड मॉर्निंग। एंड अच्छा तभी लगता है जब मेरे आने से पहले ही यहाँ पे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आ जाते हैं। इट फील्स रियली रियली नाइस। यस, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर सुबह एकदम टाइमली पहुंच चुकी है। अभी ट्यूसडे, जी हाँ, ट्यूसडे वाली सुबह ही है जब मेरी आवाज यहाँ पे चहकती हुई बिल्कुल पहुंच जाती है। कितना चहकना होता है सुबह से, लेट अस नॉट इवन गो ओवर देयर। बट यू नो समटाइम्स कैसे वी वेट फॉर समथिंग रियली बिग टू हैपन बिफोर वी अलाउ आवरसेल्व्स टू फील हैप्पी कि भाई ये जब हॉलीडे आएगा तो एकदम खुश हो जाएंगे अपन। मतलब एक परफेक्ट डे होना चाहिए हैप्पी होने के लिए। बट वॉट इफ हैप्पीनेस जो है इज नॉट हाइडिंग इन द बिग मोमेंट्स at all. कभी सोचा है ऐसे? What if it's the first sip of chai this morning? अगर जब जो मैं बस आपसे बात करने के तुरंत बाद लेने वाली हूँ। Now in finding that missing sock just when you are kind of getting late, एक अजीब सी खुशी मिलती है कि yes, आज तो मतलब कमाल ही हो गया, कुछ अच्छा ही होने वाला है। Maybe in a message from someone you were not expecting, or simply in knowing that you have been given one more day to try again. So, आज मस्ती का मंत्र इसी बात से शुरू करते हैं that you don't need a perfect day to have a good day, right? क्योंकि life हर रोज fireworks नहीं लेकर आती है, कभी कभी वो बस एक छोटी सी smile, एक अच्छा सा गाना या एक unexpected compliment भेज दे देती है। So, as you begin आज का दिन यानी कि Tuesday, do not wait for everything to fall perfectly into place. Start जहां से आप शुरू करना चाहते हो, smile where you can and appreciate what already is right. Who knows that the thing that makes today special might be something you have not even noticed अभी तक, right? इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं। खूबसूरत से गाने सुनेंगे, सारे अपडेट्स लेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट हमारा ट्यूसडे जो है काफी काफी अच्छा रहे। नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, स्टे ट्यून्ड विद मी।

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
5: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे कंत्रा.
3: मुझे कभी कभी तो लगता है कि ये सारा माइंडसेट का ही खेल है, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द एंड. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराय के साथ 7:00 हो चुके हैं 17 मिनट. एंड एक्चुअली मैं अगर सोचा जाए कि हम जब किसी एक चीज के लिए निकल पड़ते हैं, देन इवेंचुअली वी फिगर आउट कि इसको करना कैसे. नहीं, एंड व्हाई एम आई सेइंग सो, बिकॉज आई रेड द स्टोरी एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. मतलब क्या वो वक्त आया होगा कि अचानक इस बंदे ने एक दिन सोचा होगा कि चलो साइकिल उठाते हैं और निकल पड़ते हैं, कहाँ लद्दाख चलते हैं साइकिल करते करते. सो वेल, दिस इज द कहानी ऑफ दिस गाय हु सडनली वन डे उसने अपनी साइकिल उठाई कोलकाता 12 साल. ओके, वहां से उसने शुरू किया एंड ही सेड कि हम साइकिलिंग करते हुए जो है जितने हाईएस्ट पीक पर पहुंच सकते हैं वो साइकिल करते हुए पहुंच जाएंगे. एंड दैट्स वेयर दिस गाय फाउंड हिम, एंड बिकॉज ही हैड दिस बोर्ड ऑन हिज साइकिल सेइंग कोलकाता टू लद्दाख ऑन साइकिल. सो वो बंदा कहता है, मैं तो सर यहाँ पे मोटर बाइक से आया हूँ, आप साइकिल से ऐसे करते हुए आ गए यहाँ तक. एंड उसके बैकग्राउंड में आपको ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड एवरीथिंग यू कैन सी ओवर देयर, जबरदस्त ठंड पड़ रही है. ये बंदा मस्त अपना साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और बड़े ही आसानी से एंड वेरी सिंपली कहते हैं, हाँ हाँ. वो पूछते हैं, कितने दिन हो गए? ये आज मिलाकर आज 119वां दिन है. भाई उस बंदे को भी यकीन नहीं हुआ, मुझे भी सुनते हुए यकीन नहीं हुआ कि 119 डेज दिस गाय हैज बीन आउट ऑन हिज बाइसिकल. राइट, 12 साल से शुरू हुआ इसकी कहानी अभी तक, मतलब ऑफ कोर्स लद्दाख में और भी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है. क्या सोचा होगा, क्या क्या उसके दिमाग में आया होगा कि बस कर देना है. राइट, अगर जनरली आप और मैं ऐसे बैठकर सोचें कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, एक सिंपल हाइकिंग जैसी चीज भी, उसमें भी इतनी ज्यादा प्लानिंग हम लगा देते हैं कि कभी कभी इट एंड्स अप नॉट हैपनिंग एट ऑल. सो मे बी दैट इज द थिंग, दैट देयर आर थिंग्स यू कैन, यू जस्ट गो अहेड विद इट. ओके, एंड मैंने देखा है अक्सर ऐसी चीजें वर्कआउट ज्यादा बेहतर कर आती है, बट कूडोस टू दिस गाय, आई थिंक He's very, very inspiring that ways. सच्ची यहाँ पे हॉलीडे जाया नहीं जा रहा है, लेकिन बातें हम पूरी इंस्पायरिंग सुन रहे हैं, क्या ही बताएं. गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अपन वो करते हैं जो हमें आता है, अच्छे गाने सुनते हैं और ये कहानियां सुनते रहते हैं, है ना.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: मसकले ओ माय गॉड क्या ही गाना मजेदार 7:28 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में ये मसकले आपको बताने वाली है कि सिंगापुर की सड़कों पर इस वक्त क्या है ट्रैफिक का अपडेट वी गॉट ब्रेकडाउन आपको मिलेगा पीआईई पर टुवर्ड्स इट वाज एट पायरबार रोड एंट्रेंस एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन पीआईई अगर आप जाए टुवर्ड्स चांगी आफ्टर बुकेट बदॉक ईस्ट एवेन्यू 3 अवॉइड करें लेन नंबर 4 और एक वे कॉल ब्रेकडाउन की खबर है ऑन पीआईई टुवर्ड्स इट वाज आफ्टर इंडिया एवेन्यू सो वेल ये है इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज केके की आवाज मूवी का नाम काइट हालांकि मूवी इतनी ज्यादा नहीं चली बट दिस गाना एंड केके की आवाज डेफिनेटली या इट सेज जिंदगी दो पल की एक्चुअली में कम टू थिंक अबाउट इट गुड मॉर्निंग
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव Keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द RJ Academy at Musti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ 7:35 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में एंड मुझे पता था ये बंदा तो टू गुड है ही है भाई. आई एम टॉकिंग अबाउट जिन्होंने सबका दिल जीत रखा है, दिलजीत दोसांझ. आई मीन ऑफकोर्स जिस तरह से मैं यू नो कॉन्सर्ट टिकट्स के लिए मारा मारी करके आई फेल प्राउड दैट आई वॉज नॉट दिलजीत दोसांझ का बट BTS के टिकट्स मेरे को मिले हैं. आई ऑल्सो नो फॉर अ फैक्ट देर आर लॉट ऑफ पीपल उनका फैन फॉलोइंग दिलजीत पाजी का इतना ह्यूज है, जब उनके कॉन्सर्ट अनाउंस होते हैं तो उनकी टिकटें भी ऐसे ही फुर करके बिल्कुल निकल जाती है. बट व्हाट हैपेंड रिसेंटली वाज इवन मोर स्पेशल आई थिंक फॉर दिलजीत दोसांझ हिमसेल्फ बट आल्सो फॉर ऑल हिज फैंस अक्रॉस द ग्लोब. लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है January 6th विच इज द बर्थडे ऑफ हमारे दिलजीत दोसांझ पाजी एज द दिलजीत दोसांझ डे in recognition of his contribution to the global music and South Asian representation in American culture. Ye announcement aaya weeks after Diljit Dosanjh jo hai was in the spotlight over the reports that he had given up his Indian citizenship to become a US citizen. Now filhal Diljit Paji, who is currently apne Aura World tour mein bilkul अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, ही इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ही रिसीव्ड दिस ऑफिशियल रेजोल्यूशन फ्रॉम द काउंसिल वुमन मोनिका रोड्रिगेस आफ्टर उनका सोल्ड आउट कॉन्सर्ट जो है अरीना में. नाउ इट इज अ ह्यूज थिंग. नाउ आप सोचो कहां से ये जर्नी शुरू हुई एंड नाउ इट इज समवेयर US में वो कह रहे हैं लॉस एंजलिस में कि ये एक दिन इट इज दिलजीत दोसांझ डे, लाइक इट इज योर डे. इट्स सो स्पेशल एंड इट्स अमेजिंग. इट्स अ प्राउड वुमन एट द सेम टाइम फॉर ऑल दिलजीत दोसांझ फैन आउट देयर. यस ये गाना ऑफकोर्स आई हैड टू प्ले बिकॉज एवरी टाइम आई थिंक अबाउट हिम देर आर मोर इवन बेटर सॉन्ग्स दिलजीत पाजी ने जो गाए हुए हैं, बट इसकी ना वाइब अलग है. तो मैंने सोचा सुबह सुबह थोड़ा सा एक वाइबी गाना हो जाए, वो भी कमिंग फ्रॉम आर वेरी ओन दिलजीत पाजी. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर नॉट ओनली आई थिंक आई लाइक हिज सॉन्ग्स, आई लव हिज व्लॉग्स. आई थिंक ही इज वेरी फनी द वे ही टॉक्स, द वे ही सेज थिंग्स. एंड जब वो बनाते हैं खाने, उनके वो वाले ब्लॉग्स बहुत ही ज्यादा फनी होते हैं. मैं ऐ डाल दिया कुकड़ और कुकर में कुकड़ और ही इज टू फनी. यस सो यस हियर वी गो. गुड ऑन हिम. गुड मॉर्निंग.

0: some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: आपकी नॉलेज आपकी जीत.
3: Masti Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा.
5: इस डीप फेक की दुनिया में क्या सच है और क्या झूठ, कैसे पता लगाए, कैसे पता लगाए. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं मंत्रा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है, ऑफ कोर्स मस्ती का मंत्रा. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग, बट व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट डीप फेक. भाई सिंगापुर में भी हमने देखा हुआ है कि कितनी हाल ही में दिस इंसिडेंट हैपेंड, राइट, कि पीएम वोंग जो है जूम कॉल में इस तरह से किसी ने

कुछ मैं बहुत पहली बार इस तरह से कुछ कह रहा हूँ. व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से दैट मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो है अगला पार्ट बिल्कुल अनाउंस हो गया है, बट राजकुमार हिरानी जो है वो उन्होंने मुझे और संजय दत्त को इस वाले पार्ट में रखने से इनकार कर दिया है. हमने जो शुरू किया था हमको ही इस बार नहीं रखा जा रहा है, बट सम other two people will come and take over the roles of Munna Bhai and Circuit as such. And I can see the comments in that people are really believing in. Guys, it's a promotion of some other series which is going to start, जिसमें विक्रांत मासी और बमन ईरानी जो है वो भी नजर आएंगे along with अर्शद वारसी. Yeah, it's a deep fake video. And क्या है कि आजकल लोग वायरल होने के चक्कर में दे पिक अप ओनली द पार्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर बीइंग वायरल. सो जिसने भी ये पोस्ट किया उसने सिर्फ अर्शद वारसी का ये इतना सा पार्ट लेकर पोस्ट कर दिया कि इस तरह से ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड रूमर्स फैल गए जगह जगह पे कि संजय दत्त और अर्शद वारसी को नहीं कंसिडर किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मुन्ना भाई एमबीबीएस. But what that person did not show was the rest of the part where Arshad Varsi se transition hoke Vikrant Masi pe aata hai, and then Vikrant Masi says, do you believe what Arshad just said? No, you cannot, because that's a deep fake video, and that's what their new series is all going to be about. I don't blame people also, because how will you believe? Kaise yakeen kare? It has become so easy. है ना, उन्होंने मुझे खुद ही डर लगता है कि आई डोंट नो व्हाट टू बिलीव एनी मोर एंड व्हाट नॉट टू बिलीव. कभी कभी आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक अब तो ऐसा हो गया है कि हर चीज पे आप क्वेश्चन भी करने लगे हो कि नहीं नहीं नहीं झूठे होगा, नहीं नहीं ये सच थोड़ी ना होगा, डीप फेक है. यू नो वो शेर आया वाला कहानी, इट्स लाइक रिपीट बट वेरी इन अ टेक्नोलॉजी स्टाइल. बस वेल, अगर आपके पास ये वीडियो आए तो जस्ट लेटिंग यू नो इट्स अ डीप फेक वीडियो और ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑलराइट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून.